और आप नाराज खुदा कह रे करे दोस्तों, जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है, मूफी का नाम है, नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।

0: करारे साहे जय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंग का और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता।
1: आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है। आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, हो सकता है आप इससे लुत्फ़ उठा रहे होंगे।

गुस्सा है भला जिसपे आए प्यार, किसका गुस्सा है भला जिसपे आए प्यार, ऐसा दुश्मन हाय रे।

किसका गुस्सा है भला, जिससे आए प्यार। किसका गुस्सा है भला, जिससे आए प्यार। ऐसा दुश्मन हाय रे।

जी फिल्म आमने सामने में से निकाले हैं। जी हाँ, आमने सामने में से निकाले हैं। निकिता सैफ ने सस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी के साज पर हमने पेश किए। क्या ख्याल है, आप भी हैं मैं भी हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार इस तरह से।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनाया गया क्यों दिल है तुम पे दीवाना। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, वो एक लाइफ और है मेरे पास, तुयदशंत एन का, अलका याग्निक जी का। बस ये प्यारा लाइफ सुनिए, इस तरह से आ रहा है।

ये लाइव रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाए फोन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम में 2003 का अलका याग्निक जी का वर्ल्ड फोरम थिएटर है। उन दिनों कांग्रेस खबाऊ नाम था। आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, तो क्या ख्याल है, ये फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे। कौन नहीं देखा हुआ ये फिल्म, हरियाली और रास्ता, नई गिनती 1962 शंकर जय किशन के साज पर।

हरियाली और रास्ता, ये शानदार गीत आपको सुनाए हैं। टाइटल सॉन्ग पेश किया गया ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो निकितिन ट्विंस अस्तका ये फिल्म में शंकर जयकिशन के साथ पर लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, ये रोमांटिक सॉन्ग, क्या ख्याल है।

का कई बार मेरे दिल के अपने दिल की पसंद को ये शानदार गीत चला फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। या क्या बात है, ओपन एयर के साज पर रफ़ी साहब और आशा जी नेगेटिव 65 का ये गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और है ये

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये शानदार गीत। चलिए एक गीत हम आओ प्लेयर में रखे हैं, क्या ख्याल? हाँ, इस तरह से सुमन कल्याणपुर है।

हाँ लता जी आपको सुनाए हैं, जी नहीं सॉरी सुमन कल्याणपुर, सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए हैं चित्रगुप्त के साज पर निगतिन त्वी फैफ्त का ये गीत। चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या ख्याल है ये।

लाल छड़ी मैदान खड़ी, फिल्म जानवर निकेतन 65 शंकर जय किशन के साज पर है। तो लीजिए, अब क्या ख्याल है अगर जमाएं ये चला दूं आपके लिए, आप भी हैं और मैं भी हूँ।

दिल पुकारे आरे आरे लता जी और रवि साहब एस दे बर्मन के साथ पर फिल्म ज्वल थी उसमें से निकाल कर हम पेश किए आप सभी श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, आओ इस तरह से लीजिए।

0: हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा
1: जा आम ये वाक्य आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने हैं। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

रहमान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लम्बा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है, तो लीजिए। आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है, याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें प्यार कर दे है करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रवि साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, लेकिन तीन शस्त्र 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं। जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का। जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से। जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। एवरग्रीन किशोर कुमार।

एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, एक बार फिर देखते हैं, लता जी है।

वाह शाबाश, क्या बात है लता जी की आवाज में हम पेश किए फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शकील बदायूनी की लिखी हुई गीत लता जी की आवाज में फिल्म आदमी में से निकालकर नौशाद अली के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, ये भी एक लता जी का गीत है और साथ दे रही लता जी और मुकेश, मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल रहे हैं, ये प्यारा गीत सुन लीजिएगा मुकेश जी और लता जी।

ये किसने गीत छेड़ा और किसने किसकी जुल्फ बिखरी। जी हाँ लता जी, आओ मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल कर हमने पेश किए। चलिए आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, बहुत आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

फिल्म सुर में से निकाल कर महालक्ष्मी ने आपको सुनाए द्रुमर, तो पीट पाट कर द्रुम रख दिया। बहरहाल फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका स्वागत है। फिल्म सुर में से निकाले जैसे मैंने कहा और हमने पेश की। चलिए अगला गीत। ठहर जाओ अगर आपको कहीं जाना है थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ थोड़ी देर रुक जाना।

थोड़ा सा ठहरो, लता जी आपको सुनाएं ये शानदार गीत फिल्म विक्टोरिया तूनो द्री में से निकाल कर हमने पेश किए है ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आरती बर्मन के साज पर। फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, फिल्म सीता और गीता निगतिन तुम तक 1972 का ये गीत है, 72 का ये फिल्म है और रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी बनाने वाले इस फिल्म का। रमेश सिप्पी जीपी सिप्पी ये दोनों सिप्पी जो है ये दोनों फिल्म शोले के बनाने वाले हैं और साथ मिलकर क्या नाम है सलमान खान का पिता का सलीम खान और जीपी सिप्पी ने मिलकर ये फिल्म बनाए हैं फिल्म सीता और गीता। हम इसे निकाल कर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

अच्छा जी, ओ किशोर कुमार जी, फिल्म सीता गीता में से निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, ये गीत रफ़ी साहब का ये गीत है, बहुत पुराना गीत है, निगेटिव फिर शस्त्र का। ये गीत को लेकर कितने बैठक गाना में भी गाए हैं, लेकिन ये बैठक गाना निकाले कहाँ से? फिल्म फिल्म जी हाँ, फिल्म सजनी से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात। रवि साहब आपको सुना रहे हैं निकिति फिर शस्त्र का ये गीत, सुन लीजिएगा।

0: दिखली।
1: रफी साहब की आवाज में आपको सुनाया गया है ये गीत, जब से दिखली सूरतिया तुहार गोरिया। जैसे मैंने कहा नहीं कि फिर से अशक का गीत है, फिल्म है सजना से भैले मिलनवा, उसी फिल्म में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। तो क्या ख्याल है अगर हम ये चलाएं आपके लिए कि लोग तो कहते हैं लेकिन पता नहीं निर्णय आपका क्या है, दिल उसे ही देना चाहिए जो आपके लिए जान दे, पता नहीं सुनते हैं।

उदित नारायण जी आपको सुनाए, चांद की चांदनी गुलामों की कली, मेरे लिए तुझे रब ने बनाया है। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए कौन सा फिल्म कहा या नॉन फिल्म कहा होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो, अगर मुझसे बता देते तो बहुत अच्छा होता। हमने बहुत ढूंढे, नहीं मिला, और शायद सुनने वाले श्रोताओं को भी अच्छा लगे। ये फिल्म का नाम, कौन सी फिल्म का ये गीत है, चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं। चलिए जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है।

रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या न जले। VVV.FM.NL पर आप चून है जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत इस तरह से।

दीवाने को प्यार से देखो, प्यार से पूछो। रफी साहब ने तो छेड़ दी। जी हाँ, प्रेमिका को छेड़ दी तो क्या मुकेश जी ये कह रहा है, अगर आपने प्रेमिका को छेड़ दी तो चलो उनकी तारीफ कर देते हैं हम। दर्पण को जे देखा मैं तो मुकेश धाट।

0: दर्पण को देखा जब तूने किया सिंगार, बार बार किया सिंगार। मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत, इस तरह से फिल्म उपासना में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो रेडियो।
1: भाई बहनों, किसी ने किया खूब कहा, थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं।

मित्रों, पानी को कस कर पकड़ोगे तो भी वो हाथ से छूट ही जाएगा। उसे बहने दीजिए, बहने दीजिए, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए मित्रों, तो जो जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव और तटस्थ होकर देखते रहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा, खुद ही बना लेगा।

भाई बहनों, नीम को कितना भी शहद में डुबो दीजिए मगर उसका कड़वापन, उसका स्वाद कभी नहीं बदल सकता। उसी तरह जो आपको बुरा समझता है उसके साथ कितना अच्छा करने पर भी वो आपको बुरा ही समझेगा, बुरा ही समझेगा।

दोस्तों, अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें

फिल्म धुरंधर से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में।

पीएस रावत, नहीं नहीं नहीं, म्यूजिक दिया है पीएस रावत और संगीत का लिखने वाला है शैतान सिंह। शैतान सिंह ये गीत लायरिक्स जो लिखे हैं और गायक है प्रकाश रावत। प्रकाश रावत जो रावर, जी हाँ, दिल में

अच्छा लगता भी ऐसा नया संगीत सुनने के लिए, और ये सब सेलेक्ट किया है आपके लिए और पेश हो रहा है अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। सुनने को
1: सारेगामा कारवां द परफेक्ट गिफ्ट
0: सुनने के लिए बहुत उकसत रही आप भी। आपने फोन करके और कहा तो यहाँ से आपके लिए भी पेश हो रहा है

धुरंधर, फिल्म धुरंधर से रणवीर इसमें अपना कला दिखाए हैं। इस बार सुनेंगे सैयारा।

मिथुन फिल्म सैयारा से निकाला गया है। मिथुन लेखक है ये गीत का और सिंगर है अरिजीत सिंह। ये भी एक बहुत सुंदर फिल्म है, आप नहीं देखे होंगे तो जरूर से देखना। कभी काल के ये सब पिक्चर जो है बियोस्कोप में भी इसको रिलीज किया जाता है यहाँ हॉलैंड में, तो जरूर से वक्त बनाकर याद कर देखना। बड़े पर्दे पर फिल्म देखना, पिक्चर देखना कुछ अलग है, और घर पर बैठकर देखना ये भी एक खास है।

ये आंखें गाकर सुना दी हमको शाहिद मालिया। शाहिद मालिया के आवाज़ में ये सुंदर गीत हमने श्रवण की है और गीत का लेखक जो है शिल्पा अग्रवाल ये लायरिक्स जो लिखे हैं भी सुंदर लगता है सुनने के लिए ये नए गाने जो हैं। इसमें अपना रंग है, अपना चमक है। समय रुकने वाला नहीं है, जो रुक जाओगे तो पछड़ जाओगे, अंतविकलिंग में पीछे रह जाओगे, पर समय तो जाएगा, तो वक्त के साथ चलना है, यही समझदारी है।

दूंगी हो माही रे। कलाकार इसमें है शाहरुख खान, ये आज के दौर के गीत और संगीत है। मेरे बन के रहना तू,

बन के रहना तू पेश किया गया। इस बार हम सुनेंगे अरिजीत सिंह जी की आवाज के, अरिजीत सिंह जी की आवाज में मुस्कुराने की वजह तुम ही हो।

0: फिल्म सिटी लाइट से, फिल्म सिटी लाइट से अरिजीत सिंह जी की आवाज में। मुस्कुराने की वजह तो आप ही है, कितनी अच्छी बात है ना।
1: कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात,
0: तेरी याद सता

सजनी तेरे बिन, सजना तेरे बिन, तेरी याद सतावे, अरिजीत सिंह जी के आवाज में। अरिजीत सिंह जी भी कितने शानदार गीत गाए हैं, दिल छू जाने वाले गीत हैं।

वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्रिय आत्माओं, प्रिय भक्तजनों, प्रिय सुनने वालों, आप सबको हार्दिक से स्वागत है। एक सुप्रभात, इनहेल हुए मोर्ख, नमस्कार, स्वीकार कीजिए सभी का शांता की प्यार भरी, जिसे मैंने कहा राम राम, प्रणाम, नमस्कार।

के प्रोग्राम यहाँ से आपके लिए आरंभ किया जाता है। स्पॉन्सर भजन कार्यक्रम यहाँ से आपके लिए आरंभ किया जाता है। पावन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्ट स्टाफ पर्सनल सभी मेंबर की ओर से आप सभी को एक शुभ दिवस कह रही हूँ। दन हाँग से श्रीमती लिलियन मोतीराम जी हम सभी को एक शुभ दिवस कहते हुए हनुमान चालीसा के साथ यहाँ से आरंभ किया जाता है।

दनहा के रहने वाले श्रीमती लिरियन मोतीराम जी की तरफ से सुंदर शाम हनुमान चालीसा आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। सुरीनाम अली फोर्नो मैन का नाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्त राज शिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर इस खूबसूरत दिवस में भजन माला कार्यक्रम में

अच्छे अच्छे अल्फाज इसमें जो भी नौतिहाल जी गाय कर और सुना दी है, अगर हम गौर करें तो हाँ हाँ जरूर से हमारे रास्ता जो अंधेरा है उसमें हम उजाला ही पाएंगे। श्री नाम अली फोनो मैनकंडाम हुक इंदिरा गांधी वैक से श्री भक्त राशिव पार्वती मंदिर से श्री पंडित सुभाष महावीर की तरफ से शुभ प्रभात और मंगलमय दिवस हम सभी को प्रकट कर रहे हैं। धनहाक से श्रीमती लैन बाबू राम जी, श्रीमती लैन बाबू राम जी की तरफ से यहाँ से हम सुनेंगे।

वाह मेरे भोले बाबा, सुंदर सा भजन आपके लिए प्रस्तुत किया गया है और वो भी दनाह के रहने वाली श्रीमती लैन बाबू राम जी की तरफ से। श्रीमती लैन बाबू राम जी की तरफ से आप सभी को एक शुभ प्रभात, एक खूबसूरत दिवस प्रकट किया जाता है। नंबर 10 से संस्था हिंदी प्रचार, जो परिवार चांद गुरबिन के निर्देशों में है, श्रद्धा भक्ति के साथ

0: अच्छा स्कूल से निकला।
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सुंदर भजन पेश किया गया है देन आखे इकनुत स्रात नंबर 10 से, देन आखे इकनुत स्रात नंबर 10 से, संस्था हिंदी प्रचार जो परिवार चांद गुरबीन के निर्देशों में है, देन आख मकाई स्रात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन फरीन खिंग अल खमीन हिंदू ऑनरवेज के तरफ से।

सुंदर सरस्वती माता के भजन यहाँ से हमने मिलकर श्रवण की है, किशोर की देवी सरस्वती माँ। पेश किया गया है दिनांक मकाश्रात नंबर 6 से हिंदू बास स्कूल फाहोन फरेनिंग अलगमेन हिंदू ऑनरवेज की तरफ से, रोटरडाम हॉगवलीट टेक्सास वेग नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडाम वेस्ट ब्लॉक मार्करस्ट्रैट 46 से श्री सरस्वती माता भवन से मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से हम यहां से श्रवण करेंगे।

अति सुंदर अति सुंदर सुंदर शब्दों में यहाँ से हमको सुना दी है और पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों रोटरडैम होपफुली टेक्सास नंबर 5 से श्री विष्णु मंदिर संस्था जागृति संस्था हिंदी सेवा संघ श्री गंगा माता मंदिर साथ में रोटरडैम रोटरडैम वेस्ट ब्लॉक मार्कर स्ट्रैट सेशन फेयर तक से श्री सरस्वती माता भवन से श्री मंडली सभापति श्री पंडित राजकुमार महातम जी के तरफ से शुभ प्रभात कहते हुए हम सब के लिए ये सुंदर सा भजन पेश किया गया है। Den Haag Lijsgeveen voor Park se Anand Arjun Sharma Groothandel BV ke taraf se

अवश्य अवश्य मैं बालक तुम माता शेरावाली पेश किया गया है दनाखलाइस कफेन फोर पार्क से। दनाखलाइस कफेन फोर पार्क से सुंदर ग्रोथहैंडल, सुंदर ग्रोथहैंडल इन ग्रोंटे एंड फ्रूट। इनका मालिक जो है मेरे प्यारे सुनने वालों श्रीमान परशुराम मोहनलाल, इनके तरफ से ये सुंदर सा भजन यहाँ से मिलकर हम सभी ने श्रवण की है। आपको लेकर चलते है एक बार फिर। जी मेरे प्यारे सुनने वालों एक बार फिर है दनाखलाइस कफेन फोर पार्क से बाव एंड ऑनर हाउस बद्रेव। बाव एंड ऑनर हाउस बद्रेव इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण, और इनके तरफ से हम सुनेंगे

अवश्य अवश्य। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों दिनाखलेस कफिन फोर पार्क से बाउ एन ऑनर हाउस बद्रेव। बाउ एन ऑनर हाउस बद्रेव इनका मालिक जो है श्रीमान हरिदत्त रोहित देव नारायण जी, इनके तरफ से आप सभी के लिए पेश किया गया है। और एक शुभ दिवस, एक मंगलमय दिवस, खुशियां भरे दिन हम सभी को लिए।

दिल छू जाने वाले लफ्ज इसमें जो मैं नौतियाल जी के भजन में है। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये सुंदर सुंदर भजन आपके लिए पेश किया गया है।

स्वस्तिर भवतु और हम सभी के मन में शांति रहे। पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों फाहर रेडियो के डायरेक्टर स्टाफ पर्सनल सभी फ्रेवेलर्स की तरफ से तोहफा के रूप में सभी स्पॉन्सर सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के वास्ते आप जहाँ भी हो जैसे भी रहे आपको तमाम खुशियाँ खुश नसीबियाँ पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों भजनमाला कार्यक्रम यहाँ से समाप्त होने को आ गए और देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है।

हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्र

अभी आप सुन रहे थे बोले चूड़िया बोले कंगना फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम से हमने पेश किए हैं। जाने दिल में कब से है तू, फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, सुनो हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, तुमको याद ना कर पाए तो माफ़ करना, दिल से तो तुमको भूलेंगे नहीं, अगर ये धड़कन रुक जाए तो माफ़ करना।

फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे, इसी फिल्म से हमने पेश की है जाने दिल में कब से है तू। उदित नारायण के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक सच्चा दिल सबके पास होता है, फिर क्यों नहीं सब पर विश्वास होता है। इंसान चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, वो किसी ना किसी के लिए ज़रूर खास होता है। दीवाना है देखो बेकरार हो, अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। और अलका याग्निक के साथ में सोनू निगम और करीना कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम।

0: are you?
1: अभी आप सुन रहे थे दीवाना है देखो बेकरार हो फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी हमसे हमने पेश किए हैं। एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते अलका याग्निक के साथ में कुमार सानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा। अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है कसम खा के कहो। अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

खा के कहो। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक के साथ में, कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तो फिक्र में अपनी हंसी बर्बाद ना कर। मोहब्बत, मोहब्बत क्या होता है सुनने वालों, बताओ? नहीं बताने वाली, क्योंकि आप खुद सुन लीजिएगा। उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन चुके होंगे कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत दिल का सुकून है, एतबार तेरे आने से आए, तेरे जाने से जाए। अक्का याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी रन से आप सुनेंगे।

आने से आए तेरे जाने से जाए, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में फ्रॉम द मूवी रन से हमने पेश किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग फ्री होते हैं तो देर तक सोते हैं और देर से अपने बिस्तर से निकलते हैं, तो चलिए उन लोगों के वास्ते ये गीत हम पेश करते हैं, तेरे संग सिंपल सी कॉफी क्यों ना हो जाए। फ्रॉम द मूवी जमीन से हम पेश करते हैं।

फ्रॉम द मूवी जमीन से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते तेरे संग एक सिंपल सी कॉफ़ी भी किक देती है। और जब आप लोग मुझे किक देते हैं ना तो मेरा दिल क्या होता है, डिंग डोंग डिंग डोलने लगता है। फ्रॉम द मूवी कुछ तो है इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे काली तेरी चुट्टी है परांदा तेरा लाल ने फ्रॉम द मूवी बाहर आने तक। इसी फिल्म से हमने ये गीत पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। और जरा सा हम देखें, जी हाँ, लोग कहते हैं टाइम विल हील एवरीथिंग, लोग कहते हैं टाइम विल हील एवरीथिंग, गलत कहते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर सकता। तू तक तू तक तू तक तूतिया आई लव यू फ्रॉम द मूवी घर का चिराग।

अभी आप सुन रहे थे तूतक तूतक तूतक तूतिया, आई लव यू, और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, याद आता नहीं है कब कहाँ। फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। आपको सुनाने वाले हैं कंचन और नितिन मुकेश जी।

अभी आप सुन रहे थे मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, नितिन मुकेश के साथ में कंचन जी आप सभी को सुनाने वाले थे, फ्रॉम द मूवी मीठा शहर से हमने पेश किए हैं। सुन ले मेरी लैला, यानी फिल्म का नाम है सुन मेरे लैला, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ विकी आई लव यू।

अभी आप सुन रहे थे ओ विकी आई लव यू फ्रॉम द मूवी सुन मेरे लैला से हमने पेश किए हैं। क्या आसमान गिर जाएगा दो चार घूंट हम पी ले तो, फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से हम पेश करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से, क्या आसमान गिर जाएगा जो चार घूट हम पी ले तो। एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते और आपको सुनाने वाले हैं आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी जी। चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: Thank you.

अभी आप सुन रहे थे पूछो ना यार क्या हुआ। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है बाबला और कंचन की आवाज़ में। बोलो बोलो कुछ तो बोलो।

0: बाबला और कंचन जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। और दहिया मोरी लेले लेले नंदलाल भी आप सुन रहे थे। अपनी नेकियां छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। और ये गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी सनम तेरी कसम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, ख़ास करके उन सभी के वास्ते जिनका नाम निशा है। निशा
1: जिसका इंतजार है

फ्रॉम द मूवी क्रिश हमने पेश किए हैं आपको, सुनाने वाले थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल जी। एक बहुत सुंदर गीत चुनकर रखे हैं हम आप सभी के वास्ते, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुनेंगे, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी।

अभी आप सुन रहे थे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। और फ्रॉम द मूवी मैंने दिल तुझको दिया, अलका याग्निक और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही रास्ते में है उसका घर। फ्रॉम द मूवी पापा कहते हैं आप सुनेंगे, उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं।

उदित नारायण जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पापा कहते हैं, और म्यूजिक दिए हैं राजेश रोशन जी। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। और ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है कि बुरे लोगों की यानी बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है बुरे लोगों की बुराई को भूलकर उनमें अच्छाई तलाश की जाए। तो चलिए ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

सोनू निगम और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जीत से हमने पेश किए हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। हमेशा खुश रहा करो, हमेशा खुश रहा करो ये सोच करके दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान लोग और भी हैं। कुमार सानू आपको सुनाने वाले हैं चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। फ्रॉम द मूवी सलामी से हम पेश करते हैं कुमार सानू और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, आशा भोसले जी के साथ में कुमार शानू जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सलामी से हमने पेश किए हैं, हंसाते हो रुलाते हो। फ्रॉम द मूवी ये तेरा घर ये मेरा घर, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, ज़िंदगी को ज़रूरत की तरफ ले जाओ, ख्वाहिश की तरफ नहीं। क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी होती है और ख्वाहिश तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है।

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ये तेरा घर ये मेरा घर, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है, एक तो रास्ते की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभलने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। आज पहली बार दिल की बात की है। फ्रॉम द मूवी तेरी बार से आप सुनेंगे कुमार शानू और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

का याग्निक और कुमार शानू भी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तरी पार से अभी आपने सुने हैं। हम तुम्हारे हैं तुम्हारी सनम।

अभी आप सुन रहे थे उमर जी की आवाज़ में मेरा साया साथ होगा। उमर और निसाम जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम में आ रहे हैं नदीम खान जी और नदीम खान आपको सुनाने वाले हैं जिंदगी चार दिन की ना रूठो सनम।

जिंदगी चार दिन की, ना रूठो सनम, फिर मिले या ना मिले। अभी आप सुन रहे थे नदीम खान जी की आवाज़ में। सुनने वालों, एक नया गीत जो हाल ही में अंदर आया है और आपको सुनाने वाले हैं जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन। ये दोनों बाप बेटी है और इतनी मधुर भरी आवाज़ में इन दोनों ने ये गीत को गाए हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। तुम मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए।

मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से आए, अभी आप सुन रहे थे जिया रामबरन के साथ में अनूप रामबरन जी आपको सुनाने वाले थे इस विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। मैं नदिया की धारा, वादिका रामसुकुल और स्टीफन बैताली आपको सुनाने वाले हैं।

स्टीफन बैताली और अपवादिका रामसुकुल आपको सुनाने वाले थे। मैं नदिया की धारा, बाहें तेरी किनारा, धीरज लाला राम जी प्रोग्राम में आ रहे हैं वादिका रामसुकुल के साथ में। मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरी सनम तेरा खत मिला भी आप सुन रहे थे धीरज लाला राम और वादिका राम सुकुल जी की आवाज में। रायन मनोरथ आ रहे हैं प्रोग्राम में, मैं प्यार का दीवाना।

0: वही देता वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार। फौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मौत की खबर पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
1: ओढ़न मिट्टी बिछावन मिट्टी ओढ़न।
0: दनहाक से रिश्तेदार परिवार अब्दुल रामलखन और बाकी परिवार बहुत गमी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि शुक्रवार 8 मई को 79 साल की उम्र में इंदलीफ तहत फन नेक नसीफ इंतखियार बेगम पत्नी बीवी साहिबा मिल्दरत अब्दुल सहूर रामलखन का पति यानी खाविंद, दो बेटा इरविन और फारली का वालिद यानी पिता, दो बहुएं पतो यानी सोन डॉक्टर्स फौजिया और रिया का ससुर, छह पोता और पोतिन यानी क्लैन केंद्र फानिया कार्स्टन ओमार हमसा रायना और बिलाल का दादा यानी आया, दनहा के रहने वाला जनाब रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सहूर का वफात हो गया है, जो जिंदगी में भी सुहानी ऑर्केस्ट्रा मस्ताना ऑर्केस्ट्रा और म्यूज़िक फॉर्मेट सी चाहत का म्यूजिकांत था। मैयत का दीदार आप कर सकते हैं सोंदक 3 मई के फन ए नीर तो मेदक्स औद हाक वेख 28 दिन हाक शहर में, और भी मैयत का दीदार आप कर सकते हैं मानदक 11 मई 3 तो 11 यूर मस्जिद यानी मस्के जमात अल ईमान में, जो हुफकाद होनत नई का होनत 3 पर है। उसके बाद मैयत 12:30 बजे यानी हल्फ इन जनाजा पढ़ने के बाद हल्फ तुई न्यू एकन दोइनन कंप फुल इस्तरात के कब्रिस्तान में तजीर व तफीन किया जाएगा। खबर को हम दोहरा रहे हैं, दनहाक से रिश्तेदार परिवार अब्दुल रामलखन और बाकी परिवार बहुत गमी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि शुक्रवार 8 मई को इंदलीफ तहत फन नेक नसीफ इंतखियार 79 साल की उम्र में बेगम पत्नी बीवी साहिबा मिल्दरत अब्दुल सहूर रामलखन का पति यानी खाविंद, दो बेटा इरविन और फारली का वालिद यानी पिता, दो बहुएं यानि सोन डॉक्टर्स फौजिया और रिया का ससुर, छह पोता और पोतिन यानि क्लैन केंद्र फानिया कार्स्टन ओमार हमसा रायना और बिलाल का दादा यानि आया, दनहा के रहने वाला जनाब रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सत सहूर का वफात हो गया है, जो जिंदगी में नया जमाना ऑर्केस्ट्रा मस्ताना ऑर्केस्ट्रा और सुहानी ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिकांत था और साथ ही साथ म्यूजिक फॉर्मेट से चाहत का म्यूजिकांत था। मैयत से दीदार आप कर सकते हैं सोंदक 3 मई के फन देर 3 यूर तो फिर 3 यूर औद हाक वेख अख्तन दिन हाक में, और मैयत का दीदार भी आप कर सकते हैं सोमवार मानदक 11 मई को 10 से 11 बजे तक मस्जिद यानी मस्के जमात अल ईमान में, जो हुफकाद होनत नई का होनत 3 पर है। उसके बाद 12:30 बजे यानी हलफीन जनाजा पढ़ने के बाद हलफ तुई न्यू एक एंड दैन कम्पुर फुल इस्तरात में कब्रिस्तान में तजीद व तफीन किया जाएगा।

मालूमात के लिए तार का नंबर दिया गया है 06-16-11-73-61 और एक तार और है 06-41-25-88-93। मैं दोहरा रहा हूँ 06-16-11-73-61 और 06-41-25-88-93। फाहुन हिंदुस्तानी सभी परिवार राम लखन और रिश्तेदार अब्दुल को यहाँ से शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं और मातम में शरीक है। सुनने वालों से निवेदन है और गुजारिश है कि ये खबर तक और आगे तक पहुँचा देने को। यहाँ तक था फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मौत की खबर, रिश्तेदार अब्दुल।

जब मुअज्जिन की अजानों से हो रहमत का नुज़ूल, बरसे तुर्बत पे मेरी गुलशन फिरदौस के फूल, रोज इस तरह चमकता रहे तुर्बत का नसीब, रोज इस तरह, हाँ रोज इस तरह चमकता।

जब मौसम कहे तकबीर बसत इस दुनिया मेरी तुरबत हो मेरे वास्ते एक जाए नमाज सबके आगे हो खुदा मैं रहूं रहमत के करीब सबके आगे सबके आगे।

इंद्रनील रॉय और प्रशांत रामजतन की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे ये मैथिली सॉन्ग जब जब बाहर आए। अब तो है तुमसे यानी एक मैथिली आप सुनेंगे काश बी की आवाज़ में।

काश बी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये मेडली सॉन्ग। रायन मनोरथ और जॉयस शिव प्रसाद प्रोग्राम में आ रहे हैं आपके आ जाने से।

जय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में। घटा छा गई है

Kala na jani unchinich, kala na jani jant, Sorsati Mata DJ, humko apni aashirvaad. तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा एक बार फिर राम राम नमस्कार प्यार भरी दाम से सियकाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम

और दोस्तों इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम हम तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना देश सूरीनाम में, और सूरीनाम में भैया आप लोग जानो है, जहें देखो बस वहीं ही, जहें देखो वहीं सोना खुदा। भैया बेनलांत में सोना खुदा है, और जहां सोना है तो वहां लुटेरा भी बहुत ज्यादा है। आप लोग जानते हो है, जब देखो तो कहीं ब्रासिलियान तो कहीं ईट कहीं ऊ, और जाए कि सबके लूट लेवे है। तो एक बार फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम आए ले हमारे जनता हाउत बदरैव सूरीनाम में। वो है बीते हुए रविवार को सोमदाह को दुई गो तुई हाउत शुक्र भैया फन अन हो खफालन ऊपर से गिर गया भाई, बाकी ये बात ना है, ये गिरल है दुई गो लंडन ऊपर से नादा से फोर्स एस्ते इंफॉर्मेशन वारन अफ हकुमन ऑफ सो खनुम द हाई ग्रेड ब्लास्ट पे बार बे खातिर ओम एगो एक्सप्लोसिव भइल है इन खदील त फन मेन वार खस्तीन द मेट एन हो खौत गहालते वर्ड लॉस गमाक। तो वहां पर एगो काबले है एक्सप्लोसिव से मन करी से जो ने इटवन दगे तब सुनवा मिलेगा। और यहाँ पे ना द ऑन फ्लॉफिंग ना द ऑन प्लॉफिंग ढेर इलेखाल साउथ साउथ सुकर्स उरेक्टिंग हुआ मेरा हुआ पर टैक्स फोर्स स्ट्रेट ओपन फॉर यू द ग्रुप दिस हुआ पे टैक्स फोर्स जो रहा ग्रुप हुआ जो हुआ दौरल रहा जो दगल है तो सबके हुआ खदेरी से और बोले तेईस तरह तो किंग हेड मिस बोले कि वही में दुई मिला ऊपर से गिर गए और दोनों भैया दोनों भैया कट उड़ गए मोड़ी उड़ में चोट लगल है। अब बोले है वेर तर प्लास से बहंदल टैक्स फोर्स मीडिया वेर के सु सबके हेल्प करी से ई हैव यू फलीन करी से बोले बाकी दोनों सलाख तो फरवन दोनों जो ने इटवा पे गिरल लाते से रॉस ब्लॉक है राक्तन ज्वार खवन भैया बहुत चोट आए गए हैं। शेर मोई लग बड़ा एक बार फ्लैक है वहाँ पे जहाँ पे जबन जाए क्योंकि हेल्प कर सके हैं। और दोनों लंडन हुए पे वो दोनों आदमी के दोनों के मौत हुई गए भैया देहांत हुई गए मर गए है। द सिचुएशन इन मिनट्स अंडर कंट्रोल है बोले है मेंसे दी नो ओमगेविंग सिख नो रूरन फर्स्केलेंडे डिस्टेंस एंड इनकस्काकर जहाँ पे फॉरेंसिस ऑफस्पोरिंग जिस भी हुआ बा और बोले ओक द हेल्प तो भैया इलिखालन मरल हैगा जैसे भन दागे हुआ इटुआ बिरगिया फोरे है जाए के सुनवा खोजे तो इलिखालवन दौरे है भैया सब दौरे के जाए हम सुनवा पाई हम सुनवा पाई और जे दौरी है भैया तो यही प्रॉब्लम हुई। दोस्तों हम चलते हैं फीहा पी के ओर। यहाँ बताए गए है तुलंजानो फोर से तरफ यहाँ पे ही रहा और रहा हम लोग के चांद संतोखी रहा। तो चांद संतोखी तो आप लोग जानो अपूर्णा है तो ओकर जगह पे अंदर फोर से तर जो रहा फिर यहाँ पे के और हैगा ग्लेन उलर्स। तो ग्लेन उलर्स अंदर फोर से तर रहा अब सब सोचे कि के फोर से तर बनी हुआ पे। तो यहाँ आज के न्यूज पे है कि ग्लेन उलर्स पैर डायरेक्ट न्यू फोर से तर हो गए हैं फे यहाँ पे के तो पार्टी कांग्रेस नेगन इन 2027 तक ऊ रहेगा बोले फे यहाँ पे ही ग्लेन उलर्स पर डायरेक्ट आनखवीसन अस न्यू फोर से तर होफ वर्स्टीर के फोर से तर हैगा जब ओ प्रेसिडेंट संतोखी एन फॉलक द ओवरलीडन पार्टी संतोखी जगह बा। अब बोले 4 तारीख मई के एगो फरखादरिंग में हो फर्स्टीर भइल है फॉल्क द पार्टे वर्स फॉर एस्ट ट्वी डेर द मेर्डर हेड फन एट अंतल सिचुएशन बस्ट्यूस लीडर अनवीस वार्डो रेक्सखल्डिक एन बस्लाइट कौन वार्डन खनुमन द फॉली द नारा बस्ट्यूर में ट्वी डेर द दिन बस्लाइट कैसेगा और वो बस्लाइटिंग वहाँ सब हैं काबुल हैगा लिली सम द ट्वी डेर द दिन आइला
Op het opvallend hegaan dat Oelers niet via een directe verkiezing door de partijcongres is gekozen, maar door schuif vanuit zijn functie als ondervoorzitter. Dus ook is hem een verkieskerk in arbeid, hij zei. Maar omdat u ondervoorzitter had, u schuif je als voorzitter. De VHP stelt dat dit gebeurt conform artikel 11 lid 5 volgens van de partijstatus Milikele. Bullet de aansluiting loopt vanuit een formele goedkeuring door het eerstvolgende partijcongres Oelers. Zal de functie uiterlijk 29 mei 2027 klikken voorzitter Rehee. Op die datum moeten de hoofdbestuursverkiezingen door de partijcongres worden gehouden te Pino Hoiga. Ook er waren mee, maar oor hij gaat tot en met Janneke mei 2027 klinkt aan wala salte gale 1 jaar ke uba to dosto jaise hai aur ta aap log ko hum uske bare mein batate hi rahenge aap log ko pata bhai walon bhaiya lon mausi lon dadi lon kana waima jon botiya kar bare mein bite hue hafta mein bhi aap sab ko hum bataye the ki bhaiya jon firwa hapda hue kana waiva very sherfis jon hai wahan par भैया नवा राजफन बस्तीर बैठल रहा ओकर बारे में हुआ के कम करते स्टक कर ले रहा जब मिनिस्टर फन गए ले हुआ पे तब बोले हैं जो बस्तीर है बोले बारा चोरी करी से तब बस्तीरवा के इन डायरेक्ट ऑन स्लक कर दी से रखे रे बाकी उस सबके को ऑफिसर रहा जेकर नाम बा सिंथिया एंसर एंड टेनिमर मैनेजर रहा लेस्ली डैनियल फंडा कानावाइमा मैनेजमेंट कंपनी जो तार तारीख सोमवार के फिर मई के ओहू सबके ऑन स्लक मिल गए है दैट बा फेस्टकन ब्रॉनन बेरेस्केप Vaartmaatschappij in Suriname tegenover. Bolle vernomen wordt dat is het besluit van deze onderzoek bijlegen. Kiezen hem zeggen naar onder meer financiële. Bolle ki financiële chori kalne baate bhaiya fraudeer kalne baate aur jo fraudeer kalne baate da krai ki dit alamal men se pehle bastirwa ka bole hai ane bastirwa onslag bhaila apokar adviseur bhi okar adviseur bhi yani ki onslag hoi ge hai hamare janta aur yahan aur batave hai rfm ke bole hai commissaris ratfan commissaris ke bole hai aur fan AMC werd 22 april ke us op ontslag bijl hai jahan pe commissaris Rizanel Vrieze en leden Abdul Madar en Edgar van Genderen minister Raymond Landveld jo nahi ga communicatie tussen communicatie en toerisme ke gebeurde dit moreel en ethische gronden. Oh, bole he, ik er waren corruptie raha, belang verstellende en mogelijke corruptie raha. To corruptie to hamara des mein is ter plaats pe hai, hamare janta. To je is ter plaats pe hai. Na wat verwacht je eigenlijk van deze nieuws is een hele normale nieuws mensen. Want je hebt sunio, te ham aap loke batate rahe, ki yahan par corruption bhail hai wahan corruption bhail hai ta je corruption ho hai dosto ta batana to hamara kaam hai lekin in Suriname is dat een hele normale saag geworden wat betreft over corruptie beste luisteraars to ye baat hai hamari janta ab dekho bhaiya ne ka bole hai Deo Sharman ka bole hoge gebouwen in Suriname vereisen moderniseren. Sering van brandweer. Bole jon purana barka gebouw he. Bole sab chahi brandveilig reike. Bole chahi moderniseer kareke. Ucha gebouw Suriname me ba. Vereisen panden die op een niveau van high-rise gebouwen waren neergezet. Deze kwestie werd afgelopen week aangekaart. Brandweer Suriname 1993 keer. In het hoogste college van staat.
Or op de parlementariër onderschreef dat de brandweer gemoderniseerd en adequaat uitgerust moest worden, moesten alleen nablussingswerkzaamheden verrichten, huizen niet verzekerd tegen brand. Bij huisbrand blijkt veelal dat huizen en panden van bewoners niet verzekerd zijn. Al hoe ze een verzekerd krijgen, barka gebouwen, maar die moeten natuurlijk wel brandveilig zijn. Mensen, zo is het in Nederland ook, mensen, het moet goed brandveilig zijn. Vooral die hoge gebouwen niet, maar alles moet brandveilig zijn. Toen je baat tegen Marijenta. En ja, wat hij, bhaiya. VS, Amerika en Iran escaleren strijd om straat van Hormuzi dunu ke ladiya hoe bhaiya hiya hum log ke tel hiya pe dala se jyada hoi ge hai. Amerika aur Iran somwar ke niwa anfal kari se bhai in de Golf regio mensen, terwijl dunu deswan verwikkeld zijn in een strijd om controle over de strategische staat van Hormuz. Dunu mange Hormuz ke lewe ab ek kona sunio bhaiya ki oorlog hua hove keran wapen ke ki mach ke ab sab ko tel ke bare mein ja hain wan Hormuz straat jo hai o ke saman ban kar le ba dunu aur pura duniya e ma musibat mein ba. De nieuwe escalatie ondermijnt een fragiel staakt het vuren en zorg voor toenemende spanning in een van de werelds belangrijkste energiecorridors. Ja, wat eigen je dus toen. बोले अनफलवार रॉकेट से हुए ड्रोन से हुए है डोनाल्ड ट्रंप बोले एक नया ऑपरेशन अनकोंद करिसेगा प्रोजेक्ट फ्रीडम के बारे में कि फ्रीडम होए फ्री होए और एक बारे में बोले फर्स्ट क्लो पर टैंकर्स एंड अंडर्स कीपन वे दौर खान तबीदन दौर द सी स्ट्रैट दी फ्री वेल गेस्लोटन इज सिंस द अनफाल अमेरिका इजराइल से और ईरान से फरवरी में बन भइल है दोस्तों. Or ja, wat eigen Amerikaanse autoriteiten werden maandag bole meerdere koopvaartdijschepen getroffen. Trump bole he weinig over project Freedom ba. Dat heeft via sociale media aankondigd. To ibhaya ham lukke Trump to dunia bhar ke chij oper bole he. Ma konchi ओमा वार हुई पावे की ना होवे है. सबसे बड़का मुसीबत है कि हम लोग के तेल बन है और जब तेल बने भैया तो हम लोग के का बोले महंगा में कीने के परी अरबेस डाक्स भैया क्वेस्टी अरबेस डाक्स के अने देख तो रात जो नहींगा अने स्टेज हेट hang eiser voor hoe op je jonega C47 vakcentrale jon in Suriname bole hega bole arbeidsminister van arbeid ke bole vervolgens onderbrengen van dit directoraat onder andere ministerie jon minister van arbeid he bhaiya nog steeds een heet hang eiser ba bole zoals bole bekend kare he valt arbeid nu onder ministerie van volksgezondheid welzijn arbeid aur ik er bare mein Robbie Berenstein bole situatie ook nooit goed is uitgepraat met de regering. Een keertje is er even daarover met de president gesproken, maar meer niet. Berenstein zegt dat er vanuit de vakbeweging ook worden gekeken naar wat de invloed van de beleidsbeslissing zal zijn voor de werkvloer. Ke bare mein bole Berenstein C47 ke. Aur dosto chikun guniya bhaiya Suriname mein bahut jyada hai tikar bare mein Raghu Nandan ka bole baloof kare hai ki chikun guniya blyfen chikun guniya bespuiten blyfen uit in Nikeri. Ja, bole bewoners van Nikeri aur westelijke polder bole hai ki aankondig karisega ki bespuiten tegen chikungunya terwijl volgens openbare gezondheidszorg BOG bole 24 april ke bole uitgevoerd hadden moeten zijn bole 24 april ke bole uitvoer karat aur DNA legion hai Ravindra Gunandan bole ophelderen mange ministerie van volksgezondheid ke aur bole hega nu blijkt dat meerdere straten niet zijn behandeld aur communicatie volledig uitblijft.
बोले ढेर रास्ता बोले सब नासपोईटी करी से बोले हैं मांडन फन वाक्तन कॉमन ऑफिशियल बकेन माकर भी योखी बोले हैं ओवर गरिक्त बस्पोईटी इन ओंदर मीर फन पेतम पोल्डर इन द वेस्टलिके पोल्डर देर का बहुनर्स होप दैट इट आइटेंडिक एक्सिस हो वन निकेरी में बहुत ढेर भी भैया जैसे परमारिवो में निकेरी में बहुत ढेर चिकुनगुनिया है आदमी बहुत बीमार है फोल्कस इन यालन एड गमेनशाप से नीट अल अनगेकोंडिगड aangedaan en zijn sommige straten ondanks vermelding op de officiële route toen ik er waren met DNA lid roep en BOG in het ministerie te Suriname bij ja te lonjano hoe pura kam na hoe dunia kere khade ki malli bati hem maar mooi se je takio ta adhati ha mare bhaiya और आधातिया ना मारे है अब देखो भैया एगो हंता फ्यूरस चलल हैगा एगो क्रूस के फैगा होंदियो इसमें और हुआ पे भैया बहुत जबर उ काबुल फ्यूरस वा चलल हंता फ्यूरस हैगा एगो क्रूस के पे भैया सबको या क्रूस करे तो ओके जरूर चाहे जाने के कि एगो वेर खसौत है थे सौरख है अने वेर खसौत है ऑर्गेनाइजेशन है हाउट ए रीकनिंग में कि हंता फ्यूरस जो नहींगा इंसान से इंसान बसमेत करे हैं और ये क्रूस के पुआ भर पे बा और बोटिया हैगा होंदियो इसमें और मारिया फन कैरकोफ है एस्ट बसमेतिंग पाई जे फरमूडलक बैटन है इसके opgelopen waar de heer Furus aan boord is geïntroduceerd. Te bia betawe volgens ego deskundige bole he Maria van Kerkhoven bole ge eerste besmetting buiten boord ke bahire raha au botia hem gel te ekwon sab ke an besmet kar deze de WHO benadrukt dat het nog aan een aanname gaat bole wel inmiddels bevestigd kreeg dat meerdere opvallende bemaar is oma. Bolle rapportage stelde de organisatie dat 5 personen vermoedelijk besmet zijn geraakt. En ja, wat we hebben, zeker is dat een Nederlandse vrouw is ook overleden mensen aan de gevolgen van de virus. Zeker he. Doden en besmettingen aan boord eerder werd bekend dat zeker 10 passagiers botia met marge he, luchtweginspecties he, Nederlandse echtpaar dat aan de cruise deelnam. Het is mogelijk dat zij aan boord besmet zijn geraakt. Ik ben 69 jaar geouderd. En vloog naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Waar zij ziek werd op 26 april. In ziekenhuis overleed. Besmetting mogelijk via nou contact ke bare mein te skipua jo botia bhaiya oke samay quarantine mein le lise ga jaise virus jab hum log ke raha ane ka bole corona te sab koi quarantine mein band raha aise botia ke samay kap ferdi mein le lise ga ekar bole de vertrok van de ane Ushuaia in Argentinië ligt middels al dagen voor anker voor de kust van Praia hoofdstad van de Kap Verdi geen van de waren 8 passagiers en 59 bemannelijke leden van 23 nationaliteiten mag van boord. De autoriteiten staan alleen totdat 3 zieke personen het schip verlaten. Ook subkip jij ook niet meer heen, want subkip onderzoek hoe we hebben. Ondertussen spijt toestemming deze die mogelijke doorvaart naar Canarische eilanden waar het schip kan worden onderzocht. Ook bolle oké, ze hebben een gedeinfecteerd kariga botia ke de Spaanse autoriteiten besloten later op de Honduras daadwerkelijk mag aannemen. De virus भैया बड़ा गड़बड़ चीज है बड़ा गड़बड़ चीज है फिरस भाई तो जैसे रहेगा आप लोग को बता आप इंडिया के मिनिस्टर सुरनाम गइल है और कराइबिस कबीत में गइल है इंडियन से मिनिस्टर बैतलान से साके के औ गइल है सुब्रमण्यम जय शंकर 2 तारीख से 10 तारीख ले उ हिल कराइबिस कबीत में लोन टू करेगा जय शंकर इस समय पे जमैका में और सुरनाम में भी आएगा फेर द तरह से ना त्रिनिदाद अंतबी गो और बतावे है इंडिया
onderstreept het bezoek de nauwe historische en culturele banden van India met drie landen, vooral vanwege de aanwezigheid van nakomelingen van de Indiaanse contractarbeiders, deze Hamlo Bhatti, de Ohik Marujahe, India. Oké, minister Buitenland zegt dat de bezoek gericht is op de ondersteuning van Indiaanse politieke betrokkenheid met Jamaica, Suriname, Trinidad en Tobago. Naast officiële bijeenkomsten zal minister van Buitenlandse Zaken Jaishankar ontmoeting met het bedrijfsleven van de Indiaanse diaspora in drie landen. De India hei Diswa, Trinidad Tobago Sanam, Jahape Hamlukke India Academy, Suriname Megail hei, ook jij help kreeg. Nogmaals mensen, de India zegt dat het bezoek gericht is op een ondersteuning van Indiaanse politieke partij, politieke betrokkenheid met Jamaica, Suriname en Trinidad en Tobago. Dus to je baat he India ke buitenlandse यानी कि मिनिस्टर के बारे में हमारे जनता. अब देखो भैया हम चली हैं और आगे फिर वैरक भैया जैसे फोलन दाम में एक दाई जगल रहा बहुत बड़का स्कादे हुआ भैया ऐसे शीना में एक फिर वैरक का फैब्रिक है जहां पे फिर वैरक बने हैं वहां पे बहुत बड़का एक्सप्लोसिव भैल है और इस फिर वैरक फैब्रिक के नाम बा शांशा प्रोविंस हुनान में है भैया हुनान. तो एक स्वार एक्सप्लोसिव है लेगा फिर वैरेक फैब्रिक जो नेगा स्टार लियांग में चीनी प्रोविंसी हुनांग में सोमवार के 26 लोग मर गए हैं 61 लोग वहां चोटाए गए हैं और बहुत जबरदस्त क्रैक फन एक्सप्लोसिव फर्नील द खबोवन एंड फॉर और सख्त मिस्टर हुख रोक वोल्कन दी बोफन खबित आईस्टीगन एक प्रेसिडेंट जो नेगा यिंगपिंग हेफ ऑफ गिवन टू द ग्रोंडिग एंड स्नेल अंडरसुक एकर बारे में बोले चलो तुलो अंडरसुक करो जल्दी से कि कैसे चीज हुआ होई सके है फनवी खर खफार फन ब्रांड बार स्वार बिस्क्रेट फॉरवर्डन इन ट्वी ऑफ्सलाख रूम तेर वर्ड है ओमलिखने खबीदन खाइफाक वेट मेंसे तो चीना में इतना बड़का एक्सप्लोसिव भाईल है यहाँ नीदरलैंड में भी भाईला तुलों जानो फोलंदाम में भैया फोलंदाम में भी यही चीज भाईला. तो हमारे जनता और आगे हम जाइए मनोरथ का बोले भैया मनोरथ हम लोग के सुरीनाम में मिनिस्टर हैगा फॉर यूसीएस पॉलिसी मनोरथ एरकेन नीफन वर्क पॉलिसी मार वास्क्यूड फॉर मिस प्रोजेक्टेंस दिनस्टेड. हाँ बोले है बोले नीफन बरूपन मोहन ऐत उफनन बनादरुक्त दा अम्तनार बोले हमार दी इन प्राक्ते अनगदोग बलेत वर्थ गफूर्द सो दात मेंशन इन लीफर्स होदन कुनन फोर्स इन बोलो के मख के दूसर काम करे के जो ने वो अपन जिंदगी और मुंह से चलाई सके है है वेस एरोप दात यालक्स दो 300 अनमी है पर्सोनन दी दीस फरलातन उम एल्डर्स फाक in buitenland te gaan werken voor beloning aanzienlijk hoger ligt. Bole 300 admiokar chal gaye personeel buitenland mein kaam karenge te aise mange apan admiyan ke pakde opleiding centrum mein 205 go an recruiter beforder karise aur bole yahan par 5000 go policy agenda moeten liggen om optimaal te kunnen opereren. Momenteel telt de korpspolitie 2700 bemanningsleden. Als ze van je poetje hebben, willen slechts ongeveer 10 zo'n nieuwe krachten worden aangetrokken, terwijl maandelijks 20 tot 30 personeelsleden het korps verlaten. Te op zoek naar de betere werkzaamheden en beloning, vaak buiten de langs. Grenzen ze bij jou kan krijgen. En ik heb aan hem ze wat poetjes. Hij heeft aan wat aan hem gekregen. Jane Shire McShunke, die hij eerder als een van zijn vier adviseurs had betiteld. Beveiliging van politieambtenaren genoot of zal genieten? Antwoord Manore, daar is niets van waar. Hij voegt eraan toe dat ambtenaren in de praktijk wel ruimte zoeken voor extra inkomsten. Wat mensen hun vrije tijd doen, daar kan ik niets over zeggen, aldus de minister. De mensen werken in ploegendienst om hun levensonderhoud te voorzien, maar velen meerdere banen, sommige verrichten in hun vrije tijd. Beveiligingswerk bijvoorbeeld bij gouddrijven, anderen gaan naar het binnenland om extra te verdienen. De oesap mag hebben, ja. De kali corruptie kietje na hoe weet u, thiek hebben, want corruptie is subsie.
बड़का बड़का प्रॉब्लम है दिसवामी हमारी जनता, आप लोग तो एक बारे में पता है। अब देखो भैया, नीदरलैंड खाद्रीसी को ऑफारन द क्रूज के ऑफांगन एट नीदरलैंडर और नीदरलैंड पठाई से और जाएगा जो अब क्रूसो अकमारे बोली बाटी होंडियस में जो बसमैन भैल हैं नीदरलैंड तीन गो आदमी के जाए लावे फॉर द क्रूज के दैट फॉर द कुस्ट फॉर द काफे दी लिख ऑफांगन फॉलोज मिनिस्टर बैटलांसे साकेन ओम ए नीदरलैंडर एन वीरल गेसोंथेट ऑर्गेनाइजेशन स्प्रीक van twee ernstige zieke patiënten. Een team is op het schip dinsdagmiddag aan het inspecteren. Het is de bedoeling dat ze de medische toestand van opvarenden gaan bekijken. Door Nederland. De cruiseschip van de Nederlandse Oceanwide Expedition heeft geen toestemming om aan de meren van Kap Verde, de eilandgroepen ten westen van Afrika, waar schip momenteel ligt. Er zijn nog 150 opvarenden aan de boord naar het aantal van hen. Hanta virus had afgelopen mensen. Dus ye sab baat hai hamari janta. To aap log ko hum suchi ek geet sunai di. To abhi aap log ke paas hum turant aa jayenge.

और दोस्तों एक दो समाचार आपको हम और सुनाएंगे, उसके बाद हमारा समाचार खत्म आने को होगा। तो हम चलते भैया, एक आदमी अपन ओतो चलावत एगो ट्रेन वाहन दिखिला फोटो पे चलावत गए है, मकानी कैसे अपन ओतो लेके तुतनी का बोले है तुतली फो कनाल में गोतरों में घुस गए भाई ओतो लेके। 50 वर्षीय एक आदमी भैया शनिवार के उ गए ओतो लेके गोतरों में घुस गए भैया, बस एक ग्रुप आदमी आए लोग हेल्प करे और हेल्प का भैया हेल्प का 31,000 SR दे ऑटोमोबाइल स्वच्छ चुराले से और ओकर मोबाइल टेलीफोन ओके बरूफ करी से सब मैया। तो के कई नहीं कर बारे बोले जे तो के अरे नहीं भल तो संबंध बोले तो के अला हेल्प करे मऊ हेल्प ना भाए उ तो के रूफ करे आवे है। तो यहाँ बताए गए है दोस्तों ऑटोमोबाइल इस बलांत में फूटते हैं कनाल एंड वर्ड बरूफ दौर द हेल्पर्स। और दोस्तों ओकर बांध में देखो तीन को मेंदर यारक के लंदन के छोटा छोटा लंदन 15-13-14 बरिस के सिपाही पकड़ के गए ले गए सबके सब बरूफ कर ले रहा आदमी लोग का रूफ कर ले रहा मोबाइल टेलीफोन। तेखन ओफर एगो होटल है का परफॉर्म अनिमा जेका नाम बार्सिलोना ना द बरूफिंग स्लूखन द फरदाख्तन ऑफ द फ्लक इन द रिक्ते लीली दौरब गए है। और वहाँ सिपाही 2 तारीख मई के उ सबके पकड़ ले से खुरपुआ के जेमा 8 लंदन रहा dit maal was de slachtoffer beroep van een geldbedrag en vervolgens met handel. 2 van de verdachten waren daarbij gewapend met messen. De incident vond plaats ter hoogte van Gunpatweg mee. Toen je baant heen, janta. Toen je op de orde kijkt,

उम्मीद करती हूँ कि आप अपने माँ बाप को नहीं भूल गए। और जो भूल गए हैं तो याद करना। जो गलत फैमिलियाँ हो गए हैं, मन मोटाई हो गए हैं, तो उसे दूर कर देना।

तो हिम्मत मिल जाए, माँ सर पर हाथ जो फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुराए तो जन्नत मिल जाए। तो कोशिश करना मेरे दोस्तों कि अपनी माँ बाप को जरा सदा सदा खुश रखे, ताकि माँ बाप खुश रहे और आपको आशीर्वाद दे, और वो आशीर्वाद भगवान से भी टाला नहीं जाता। अभी जिंदा है माँ मेरी, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ, मैं घर से जब निकलता हूँ, दुआ भी साथ चलती है। और ऐसा भी है, माँ का आशीर्वाद, चाहे माँ जिंदा है या नहीं, अगर माँ कह दे कि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, तो वो हकीकत में है कि माँ का आशीर्वाद सदा साथ में होता है।

अल्लाह खूब फरमाए कि उसको नहीं देखा हमने कभी, तो सोचो माँ की सूरत। मेरी कलम से माँ शब्द, मेरी कलम से माँ शब्द का इतना सा सार है। माँ, माँ मेरे लिए।

नमो नमः। हरिओम। एकदम भैया बिरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार, नमस्कार, और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेन कृष्णादत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बिरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार शाम का ये हसीन प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ, मॉडर्स डे स्पेशल प्रोग्राम लेकर आया हूँ यारो। यही आशा उम्मीद है कि आज का ये मातृ दिवस के उपलक्ष्य में जो सिलेक्शन मैंने बनाया है आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो, जी साल में हो, घर पे हो, या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, या तो काम कर रहे हो, या तो अपने परिवार के साथ मातृ दिवस मना रहे हो, अपने पूज्य माता जी के साथ, पिताजी के साथ, और पूरी परिवार के साथ दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। और हमारे फूल टीम की तरफ से दी रेक्सीड ओम रूपर्स मेड वर्कर्स की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी शुभ मातृ दिवस पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइज्ड इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान करना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमान रखो फ्रेडा तेजस कंतोर यूर अब दफोल्ड टेलीफोन नंबर्स कंतोर 07-36-22-47-40 और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-36-20-77। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एनी तो फरगेट है उनसे क्वालिटी है गारंटी एंड नेचुरली फूलते सिख ऑलवेज लेकर दरबै फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुने, जो खास करके हम लोगों का बहुत ही मशहूर अनाउंसर बहना दवानंद ओली रोज सीता गिरिजा सिंह जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश की। इस तौर तरीके से रोज सीता बहन जी सदियों से आप श्रोताओं को सेवा करते आ रही है। ये आशा उम्मीद है हमारे फूल टीम की तरफ से कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से रसीता बहन जी, और आपको भी हमारे फूल टीम के तरफ से एक हैप्पी हैप्पी मदर्स डे इन हेल फेन मुदला ओक फॉर यू और धन्यवाद। अगर आपके घर पे या सभी के घरों पे तो खुशी का दिन आज मनाया जा रहा है, मदर्स डे है, तो आप सभी को हमारे फूल टीम की तरफ से हैप्पी हैप्पी मदर्स डे मुदरदाह प्रकट है, और आप सभी के नेक मनोकामनाएं, नेक मनो नेक इरादे अपने माता जी के साथ मिलकर आप जरूर मनाइए, और आशीर्वाद जितना हो सके दुआएं लीजिए, आशीर्वाद लीजिए माताओं के, वही पे तो है, उसी में तो सभी शक्ति है बंधु। नोहमास फूल टीम की तरफ से फैन मुदरदा फूल आलमाल। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है, और परिवार से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हिल फील्स डायरेक्टर मैथ्यू सिटी। जो बीमार लाचार है आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए। एनी तो फिर बंधु जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना।
फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना और थोड़ा बहुत हम लोग के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फनार्थ बीटर्स का पैनोक फॉर यू एंड हेल फैन मुदर दाखना चीड़। आप कामयाब भी हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां एंड फॉर अलखा नेट सोडोर। और हो सकता है कि कल परसों या आज आप कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता की कोई बात नहीं है बंधु मोरखेश्वर दख। दिन पे दिन अपने आप पर थोड़ा और जोर तोर से सेल्फ ट्रो बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश जारी रखना बंधु, मेहनत करते रहना। हाँ देखो, मेहनत तो है दौलत का यारी है, यही तो बुजुर्गों ने कहा है। एंड वट ओक ऑफ स्कूल दाइस एंड ओवर ऑल ऑफ योर वेर एंड बाय फ्रेंड हनुम मार ऑफ हैव ओवर क्लियर एंड ओइट ऑफ गिव नेवर गिव अप ब्रदर नगासीसा सोसो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। एंड नैटुरली बेडंक्ट फॉर हेट लुइस्टरन एंड अलफास्ट एन हेले फेन मुदरदाग फॉर यू अलमाल एंड परमेश हमारे फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम। फेन वाकांसी, गेनीत ervan एंड ब्लैव लुस्टर नार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। यू गाट इट सेकर लुक फिंडन एंड दैट मीन इट ओवर। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं या यात्रा पे हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको भी एक शुभ यात्रा। फेन वाकांसी, तमाम लोग सुनते हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को इंटरनेट के लहरों द्वारा ऑफ एंड टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप, तो आप भी सुनिए हम लोगों को ऑफ यू फकांसी एड्रेस सू मेंट यू एंड ब्लाइव टू फन अलस ऑफ द होप्ट फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे देन हाग शहर का द वन एंड ओनली फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। साथियों, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एड फिल्म ललकार कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी कि आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं और सदियों भी कहते रहेंगे कि हैव टू नास्ट आउट एज लीफ एंड आर फॉर सेम मेंस एंड आर फॉर लीफ कॉटन्स gestuurd op de wereld om van elkaar te houden en van elkaar ook te leren en van elkaar te genieten, elkaar lief te hebben. तो मिल जुल के हम लोग चलाते हैं यहाँ पर और आपको भी ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हुसैन फॉर ईफ, पानी के बुलबुले के तरह हम लोग आए हैं और अपना जो छोटा सा रोल है ना उसे हम लोग अदा करके और फिर चले जाएंगे। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक। आज थोड़ा मॉडर्न दा स्पेशल है तो सरनामी संगीत बीच हम अख्तर क्रॉन्ट हम पार एपिक वेल से सेलेक्टेड en tussendoor veel Bollywood songs in verband met Moederdag natuurlijk. Beech me kuch gyan ke baate, sher shairi hai, to kul mila kar hamara aur aapka saath takriban 8 baje raat tak chalega, to zarur program ko sunte rehna, mazi lete rehna, Moederdag sabhi ke saath milkar manate rehna, aur program ko bhi sunte rehna. Ravi saab ji hamesha ki tarah.

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत और भी रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज के साथ। फॉर हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, घड़ी की तरफ देखता हूं तो 15 मिनट गुजरने वाला है 5 बजकर। तो आज का इस हसीन शाम का प्रोग्राम जो आप सभी के नाम है, खास करके मॉडर्स डे स्पेशल का शुरुआत में करने वाला हूं, खास करके दुनिया भर के सभी माताओं के लिए अन हेल फैन मुदर दाख, और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि तमाम माताओं को सुखी रखे और उन्हें सभी दुखों से बचाए, और जितने माताओं का नेक इरादे हैं, नेक मनोकामनाएं, ये साल भी पूर्ण होते जाए। और माताओं में तो मेरे ख्याल से हम लोगों के धर्म ये कहता है कि दुर्गा माँ हम लोगों का सबसे बड़ा माँ है। तो हमारे इंटरनेशनल कलाकार सूरीनाम देश का देवानंद उंगली उस्तादों का उस्ताद श्री क्रिश राम खेलावन जी के ब्यूटीफुल आवाज़ में ये अति सुंदर माँ दुर्गा का भजन आप सभी प्रिय प्रिय माताओं के नाम।

Gustavo Costa, maar is naam Diska, Mluka Diska, international kalakar, is bij mijn aanzicht erbij, de one and only Gustavo Costa, Sri Pandit Chris Ram Kelanji. Pound Hindustani, radio bij aap, tjoen heb, 19 minuut guzer, tjukai, 5 bachkar, और मॉडर्स डे स्पेशल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अगला बयान द लायन ऑफ बैठ गाना फ्रॉम हॉलैंड दी हेग सिटी द वन एंड ओनली मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी का ये बिल्कुल प्यारा सा भजन हमारे दुनिया भर के तमाम माताओं के लिए कि ले लो दुआएं माँ बाप की मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह See you not.

0: Shabashi, the Lion of Buiten Ghana from Holland, Den Haag, शहर से, the one and the only maestro, Devinder Singh Siyunaj जी के beautiful आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने श्रवण किए, और खास करके आज का ये जो हसीन स्पेशल दी है मातृ दिवस जी का, जो हमारे हॉलैंड देश में और पूरी दुनिया में लोग बड़े समारोह के साथ मना रहे हैं। अगला बयान है माँ के लिए, ये अति सुंदर बयान बनाया है और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को, द किंग ऑफ बैठक गाना फ्रॉम हॉलैंड उस्तादों का उस्ताद संदीप बल्लू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये स्पेशल माँ और पिता के बारे में ये अति सुंदर बयान, स्पेशल हमारी दुनिया भर के तमाम माताओं के नाम।
1: मनुष्य तन दुर्लभ है, मिले न बार बार, अगर मिल जाए इस जन्म में तो माँ बाप है आधार।

शाबाश, द किंग ऑफ बाइट, गाना फ्रॉम हॉलैंड, स्टारों का उस्ताद मैस्ट्रो संदीप बदलू जी के ब्यूटीफुल आवाज़ में ये अति सुंदर बयान है। और ख़ास करके दुनिया भर के तमाम माताओं के नाम ये भी शुभकामनाएं, प्यार मोहब्बत और बेहतरीन तंदुरुस्ती के साथ।

0: वही देता वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार। फौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मौत की खबर पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए।
1: ओढ़न मिट्टी बिछावन मिट्टी ओढ़न।
0: दनहाक से रिश्तेदार परिवार अब्दुल रामलखन और बाकी परिवार बहुत गमी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि शुक्रवार 8 मई को 79 साल की उम्र में इंदलीफ तहत फन नेक नसीफ इंतखियार बेगम पत्नी बीवी साहिबा मिल्दरत अब्दुल सहूर रामलखन का पति यानी खाविंद, दो बेटा इरविन और फारली का वालिद यानी पिता, दो बहुएँ पतो यानी सोन दोख्तर्स फौजिया और रिया का ससुर, छः पोता और पोतिन यानी क्लैन केंद्र फानिया कार्स्टन ओमार हमसा रायना और बिलाल का दादा यानी आया, दनहा के रहने वाला जनाब रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सहूर का वफात हो गया है, जो जिंदगी में भी सुहानी ऑर्केस्ट्रा मस्ताना ऑर्केस्ट्रा और म्यूज़िक फॉर्मेट सी चाहत का म्यूजिकांत था। मैयत का दीदार आप कर सकते हैं सोंदक 3 मई के फन ए नीर तो त्वेदक्स औद हाक वेख 28 दिन हाक शहर में, और भी मैयत का दीदार आप कर सकते हैं मानदक 11 मई 3 तो 11 ईर मस्जिद यानि मस्की जमात अल ईमान में, जो हुफकाद होनत नई का होनत 3 पर है। उसके बाद मैयत 12:30 बजे यानी हल्फ इन जनाजा पढ़ने के बाद हल्फ त्वेई न्यू एकन दोइनन कंप फुली स्त्रात के कब्रिस्तान में तजीर व तफीन किया जाएगा। खबर को हम दोहरा रहे हैं, दनहाक से रिश्तेदार परिवार अब्दुल रामलखन और बाकी परिवार बहुत गमी के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि शुक्रवार 8 मई को इंदलीफ तहत फन नेक नसीफ इंतखियार 79 साल की उम्र में बेगम पत्नी बीवी साहिबा मिल्दरत अब्दुल सहूर रामलखन का पति यानी खाविंद, दो बेटा इरविन और फारली का वालिद यानी पिता, दो बहुएँ यानि सोन डॉक्टर्स फौजिया और रिया का ससुर, छः पोता और पोतिन यानि क्लैन केंद्र फानिया कार्स्टन ओमार हमसा रायना और बिलाल का दादा यानि आया, दनहा के रहने वाला जनाब रेमी अब्दुल वहाब अब्दुल सद सहूर का वफात हो गया है, जो जिंदगी में नया जमाना ऑर्केस्ट्रा मस्ताना ऑर्केस्ट्रा और सुहानी ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिकांत था और साथ ही साथ म्यूजिक फॉर्मेट से चाहत का म्यूजिकांत था। मैयत से दीदार आप कर सकते हैं सोंदक 3 मई के फन देर 3 यूर तो फिर 3 यूर औद हाक वेख अख्तन तुन तक दिन हाक में, और मैयत का दीदार भी आप कर सकते हैं सोमवार मानदक 11 मई को 10 से 11 बजे तक मस्जिद यानि मस्की जमात अल ईमान में, जो हुफकाद होनत नई का होनत 3 पर है। उसके बाद 12:30 बजे यानि हलफिन जनाजा पढ़ने के बाद हलफ त्वेई न्यू एक एंड दैन कम्पुर फुल इस्त्रात में कब्रिस्तान में तजीद वर्तफीन किया जाएगा।

मालूमात के लिए तार का नंबर दिया गया है 06-16-11-73-61 और एक तार और है 06-41-25-88-93। मैं दोहरा रहा हूँ 06-16-11-73-61 और 06-41-25-88-93। फाहुन हिंदुस्तानी सभी परिवार राम लखन और रिश्तेदार अब्दुल को यहाँ से शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं और मातम में शरीक है। सुनने वालों से निवेदन है और गुजारिश है कि ये खबर तक और आगे तक पहुँचा देने को। यहाँ तक था फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मौत की खबर रिश्तेदार अब्दुल का।

जब मुअज्जिन की अजानों से हो रहमत का नुज़ूल, बरसे तुर्बत पे मेरी गुलशन फिरदौस के फूल, रोज इस

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है साथियों, रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 20 मिनट रह गया है 6 बजने में और जोर तोर से मुडर दह का प्रोग्राम चल रहा है। यारो तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना और अपने माता के साथ परिवार के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के साथ मिलकर हम लोग के साथ मदर्स डे आप मनाएंगे। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं, एक भोजपुरी सॉन्ग है, महान गायक हमारे बिहार का रगड़े पवन सिंह जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप ये अति सुंदर बयान को सुनिए और अपने पूज्य माता जी को याद कीजिए या तो उनके करीब बैठ कर और ये अति सुंदर बयान को सुनिए।

की सुंदर बयान, खास करके हमारे मॉडल स्पेशल का ये प्रोग्राम में आप श्रोताओं ने सुना ब्यूटीफुल भोजपुरी सॉन्ग बाय

आप एक से एक मॉरल्स डे के उपलक्ष्य में माँ के लिए मैंने ये ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को चुना है, खास करके आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम जो अपने पूज्य माताजी के साथ परिवार लोगों के साथ मिलकर ये माँ के त्यौहार मुदरदाख मातृ दिवस को मना रहे हैं। जन्म जन्म अति सुंदर बयान अतीफ असलम जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज एंड अरेंज बाय प्रीतम चक्रवर्ती। सभी प्रिय प्रिय माताओं के नाम

जन्म जन्म का बंधन होते हैं, ये बंधन होते हैं माँ और एक बच्चे का ना। तो मदर डे स्पेशल में ये थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना बाय अतीफ असलम। 10 मिनट रह गया है साथियों 6 बजने में। अगला बयान खास करके स्पेशल मदर्स डे के उपलक्ष्य में ये अति सुंदर बयान कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक के आवाजों में।

बयान श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया, खास करके मातृ दिवस के उपलक्ष्य पर स्पेशल मदर्स डे आकयाग्निक सानु जी और उदित नारायण के आवाज़ों में अति सुंदर बयान स्पेशल फॉर ऑल मदर्स। पाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, 4 मिनट रह गया है 6 बजने में, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बारे में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है यारो। ब्रेक

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम 3 मई मुदरदख का ये अति सुंदर प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। स्टूडियो की तरफ में आ रहा तो धूप निकला था तकरीबन 14-15 डिग्री का दरमियान था, तो आप सभी को हमारे फूल टीम की तरफ से एंड hele fijne moederdag toegewenst namens onze directie, leden, alle omroepers en medewerkers. Happy, happy Mother's Day to all of you en natuurlijk voor alle moeders. En maar de voelteam, ik trouwens je absoluut aankwijkbaar. Vierzij, zwagen, tam. Gaat ik je erop dekta, auto, 1 minuut, wie heet het, hoor. चला है छे बजकर आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर देना शहर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुडू। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइशें जरूरी खबर है इश्तिहारे दिन कन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। हो सकता है कि आप एक व्यापार हो या तो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर शोमैन, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात अब मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम सुनते रहते हैं इंटरनेट के लहर द्वारा वर्ल्ड वाइड एंड लंदलिक ओक नचीलक किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑल इंडिया देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल टाइडेंस कंतोर उर फन मांडा टूट फ्रेडा ऑफ द फॉल्कन टेलीफोन नंबर्स कंतोर 07-365-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-365-2277। तो जो भी रेडियो का काम होना देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। और इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, थोड़ा बहुत रिक्लाम बनाते रहना क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना, और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हो सके तो थोड़ा ढंढोड़ा भी पीट देना। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? De gozer is bent u niet weer een keer jaar hai. Kya bi jild si jild Fahun Hindustani Radio ka member bane aur oko bhi banae. Aap logo ko to dheer sare faida hi faida hai. Recent hebben we onze eigen karaoke team van Fahun Hindustani Radio waar heel veel omroepers live voor ons en voor u willen zingen. Volg onze social media's en omroepers, dan hoort u heel gauw waar wij binnenkort live voor u gaan optreden. En natuurlijk bent u van harte welkom. Abhi jalt si jalt, hum logo ka jo ye chota aur mota sa faun Hindustani radio ka parivar ban chuka hai, ab bante ja rahe hai, aap bhi aakar usme shamil ho jaye. Sabhi jankari iske bare mein aap taar kare op 07-365-2247 en vragen naar onze teamleider, the one and the only maestro, Johnny Number One. Waar ik een mutabik ik hier dan lekker zult hij programma ki taraf jo door se Mother's Day special chal rahe hai aur kuch nagme mein select kiya hu ye 3 ghante ke program mein khas karke दुनिया भर के सभी माताओं के लिए। अगला बयान जबरदस्त सॉन्ग दिल को छू लेने वाला नगमा, ओ माँ तुझे सलाम। जितने हम लोग सलाम करें माताओं को कम है यार, क्योंकि माँ से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। और
बुजुर्गों ने, पढ़े लिखे लोगों ने कहा है तो माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग लोग है, जन्नत है, ऑन थाउर इथ दिस प्रोबेर सो फिर सीखने फया मुदर तक रहेगा ऑन थाउर इथ दार सित द प्यूर क्रख्त माँ तुझे सलाम। Maestro Jagjit Singh.

ओ माँ तुझे सलाम, और जितने सलाम हम लोग करें माताओं को कम है साथियों। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर, और एक अति सुंदर मदर्स डे स्पेशल तैयार करके मैं लाया हूँ। ये आशा उम्मीद लेकर कि आज का ये मदर्स डे का जो स्पेशल सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं आप सभी को जरूर पसंद आते होंगे। अगला बयान है, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, क्या बात है दिल को छू लेने वाला नगमा हमारे सभी माताओं के नाम।

तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, क्या बात है दिल को छू लेने वाला, माँ और बच्चे के प्यार में। ये अति सुंदर बयान आप सुने, खास करके महान गायक ग्रेट कुमार सानू और ये अति सुंदर सुंदर नगमे जो मैं चुना हूँ। और ये चल रहे हैं हमारे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से के बड़े स्टूडियो से। आप सभी जो इस वक्त अपने माँ के साथ, परिवार के साथ मिलकर मुदरदाह मातृ दिवस को मना रहे हैं, एक से एक ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैंने चुना हूँ आज के इस हसीन प्रोग्राम में सुनाने के लिए। अगला बयान एक बार फिर कुमार सानू और साधना सरगम मिल के सुनाते हैं। फूल जैसी मुस्कान, एक बच्चे और माँ का प्यार का ये ब्यूटीफुल बयान आप सुनिए।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, फूल जैसी मुस्कान और तू बनेंगे पहचान मेरी, ये भा अति सुंदर बयान एक माँ और बच्चे के प्यार में, जो प्यार होता है ना, जो ताकत होते हैं, करख्त होते हैं, वो ज़रूर अपने पूज्य माता जी से कोशिश कीजिए पाने को, वही में सफलता है बंधु। अगला बयान, घड़ी की तरफ देखता हूँ तो 6:30 बजने वाला है, रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, दनहाक्षर का हैप्पी हैप्पी स्टेशन, जनता का आवाज, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज आप सुन रहे हैं। और खास करके मातृ दिवस के उपलक्ष्य में ये स्पेशल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं यारो, जबरदस्त गाने वाले रूप कुमार राठौड़ और साधना सरगम मिलके अति सुंदर नगमे को गाए हैं, जो मैं आप श्रोताओं को खास करके मातृ दिवस के उपलक्ष्य में पेश करता हूँ। आप सभी प्रिय प्रिय माताओं के नाम, बच्चों के नाम,

ब्यूटीफुल सॉन्ग है माँ त्रिदिवस के उपलक्ष्य में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना और ये भी खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से और हमारे तमाम माताओं को एक शुभ और फैन मुदर दाख पेश है हमारे फूल टीम के तरफ से। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है साथियों, रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 3 मई 2020 का ये स्पेशल डे मॉडर्स डे का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 6 मिनट गुजर चुका है 6:30 बजकर, तो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर लोगों ने जिंदगानी के बारे में अति सुंदर सुंदर बातें लिखे है जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये शामिल लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे, तो जरा गौर फरमाएं। अर्ज किया है, बहुत ही पुराने जमाने का आदमी था, चाइनी देश का, खबोर रोंत फिर नीख ने सीफन तक एन ओवरलेडर रोंत 551 फोर क्रिस्टस, दिस een hele oude tijd का इंसान के कुछ ज्ञान के बातें आप सुनेंगे। श्री कॉन्फ्यूशियस है, वो एक चीनीज फिलोसोफ। अब श्री कॉन्फ्यूशियस ने कहा है जिंदगी के बारे में साथियों की द वेग सेल्फ इज योर बेस्टेमिंग। श्री कॉन्फ्यूशियस जी ने कुंट यू फेम नीट फरसलान स्लोइट दन फ्रीड मेथ हेम एन हेल फ्यू है दी नीट कान लखन मुत हीन विंकल बिगिनन उन्ट हो दत। लेरन सोंदर ते देंकन इस एदल, denken zonder te leren is gevaarlijk. Wie de baas is over zichzelf, hoeft zich niet te meten met anderen. Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeën. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis. Een goede zoon moet zich zo gedragen dat zijn ouders zich om niets anders moeten bekommeren dan om zijn gezondheid. Als men ziet wat juist is en het nalaat, is dat een gebrek aan moed. Het is goed openhartig naar anderen te zijn. Maar met eerlijkheid moet je voorzichtig zijn en als het mogelijk is, moet je respectvolle en aardige woorden gebruiken. Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn. En de laatste van vanavond. Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding. En zonder die voorbereiding is falen een feit. Klopt als een bus hoor. Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding. En zonder die voorbereiding is falen een feit. Remember that. तो साथियों, अभी आप कुछ ज्ञान के बातें सुना जो जिंदगी के बारे में जाता है। ये अश्वमेध लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से कुछ ना कुछ हम लोग तो हमेशा की तरह सीखते ही रहेंगे।
20 मिनट रह गया है साथियों साथ बजने में, अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं, खास करके मॉडर्नी स्पेशल जो चल रहे हैं। ये अति सुंदर बयान सभी माताओं के नाम।

तू इतनी दूर क्यों है मेरी माँ, ये कह रही थी महान गाने वाली अलका याग्निक जी, खास करके आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के लिए मात्र दिवस के उपलक्ष्य पर। 15 मिनट रह गया है 7:07 साथियों, जोर तोर से मदर्स डे स्पेशल चल रहा है और ये भी खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से तमाम माताओं को हैप्पी हैप्पी मदर्स डे। एक जबरदस्त सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं और जबरदस्त गायक बहुत ही कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के ऊपर चले गए अपनी पूज्य माता के लिए। और देखा जाए कृष्ण कुमार कुणाल, मिस्टर के ब्यूटीफुल आवाज में उन्हीं के याद में इतनी सुंदर बयान आप सुनेंगे। कंपोनेट और महान म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट प्रीतम इरशाद कमिल के अल्फाजे हैं और मेरी माँ के अल्फाजे आप सुनिए, कॉम्ट रेक्ट स्ट्रीक्स आउट द हार्ट फन द वन एंड ओनली लेट द ग्रेट के

Mary, rechtstreeks uit de hart van maestro Keke और ये भी खास करके हमारी दुनिया भर के सभी माताओं के लिए. अगला बयान है की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और घड़ी की तरफ देखता हूँ तो 9 मिनट बाकी है 7 बजने में. और इस बार लाते हैं सुरों का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, पद्मश्री मोहम्मद रफी जी का ये बहुत ही जबरदस्त माँ के गाना, जो वो अपने ही अंदाज में उस जमाने में गाए थे, इन 1960 तक में, एक फिल्म माँ का आंचल. मिल के सुनते हैं द ग्रेट

0: माँ है मोहब्बत का नाम और माँ को हजारों सलाम हजारों प्रणाम और जितने सलाम करे कम है। माँ से कोई उत्तीर्ण कभी नहीं हो पाएगा यारो, और ये तो कुदरत ने कहा है। माँ के आंचल की साए में हम लोग अब पले हैं, बड़े हुए हैं, और माँ के आशीर्वाद से आज हम लोग बने हैं जो आज हम हैं ना। तो ज़रूर माँ के जितने हम पूजा करें, याद करें, विनती करें कम है साथियों। ब्रेक के बाद मिलता हूँ, कहीं जाना मत। आफ्टर द ब्रेक कुछ और नगमे रह गया है सुनाने को आप सभी के। माँ के बारे में तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, आप ही का तो आवाज़ है, जनता का आवाज़ है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज़ है साथियों। ब्रेक के बाद मिलता हूँ, कहीं जाना मत। यार बजना माती,
1: je hebt ons gevonden, laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 3 मई 2026 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम, मदर्स डे का ये हसीन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 1 मिनट गुजर चुका है 7:07 साथियों, हमारे फूड टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। हैप्पी हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी मदर्स डे एंड नैचुरलिक सुसुलोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नैचुरलिक बदाउट फॉर हेट लिस्टरन है। हमारे फूड टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम में तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। कार्यक्रम में आना तिलक वर्क्स बॉयस एंड गर्ल ओक फॉर यू ओक नैचुरलिक एंड हेल फाइन मदर डॉग। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइशें, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, शोमैन हो जो कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम को सुनते रहते हैं लंदलिक एंड वर्ल्ड वाइड नैचुरलिक इंटरनेट के लहर द्वारा। किफायत सस्ते दाम सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना हम लोग अब मात पर बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहता आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को होने देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल टेनिस कांतोर यूरोप मांडा फन मांडा तो फ्रेडा ओप द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कांतोर 073-65-22-47 और स्टूडियो कतार का नंबर है 073-62-20-77। जो भी रेडियो का काम होना, देंक अन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। U bent van harte welkom. इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना साथियों, चर्चा करते रहना, और हो सके तो थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। और नैचुरलिक सामवर्किंग बेंटी नो खेल फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने औरों को भी बनाए। आप लोगों को तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। रिसेंट है वो ओक ऑन एक कारा ओक टीम क्लब ये अपगेरिक्ट मेट हेल फील ओमरूपर्स दी लाइव ओक सिंगे। Dus volg onze social media's en onze omroepers, dan hoort u zeer zeker waar wij binnenkort live voor u gaan zingen. Natuurlijk bent u dan van harte welkom. In de voorbereiding. Waarak en Mutabik, ik hier dan, Bartige. Programma keterof, ik het is onder. मदर डे स्पेशल के उपलक्ष्य में नगमा रख चुका हूँ आप सभी को सुनाने को, और लाते हैं मेरी माँ वैभव पांडवर के आवाज में।

ब्यूटीफुल सॉन्ग वैभव पंद्वार के आवाज में आप सुना। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को, और ये भी खास करके मदर्स डे स्पेशल जो चल रहे हैं उन्हीं में से ये एक नगमा और है, एक तमन्ना माँ है मेरी, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग ये देखा जाए सौरभ माधुकर के आवाज में।

है मेरी अति सुंदर बयान सौरव मधुकर के आवाज में। 15 मिनट गुजरने वाला है, 7 बजकर साथियों, और आप चुन है आप ही का हैप्पी स्टेशन पर हमारे दिनाक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर 24 आवर्स एट योर सर्विस या इंटरनेट के लहर द्वारा fahunfm.nl पर। अगला बयान एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है सुनने को जा रहे हैं आप सभी को, इस जमाने के मशहूर गाने वाला द ग्रेट जुबिन नौटियाल जी।

इन नवत्याल और ये भी खास करके मातृ दिवस के उपलक्ष्य में 18 मिनट गुजर चुका है साथियों, साथ बचकर और आप चुन है आप ही का हैप्पी स्टेशन धन हाशर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर और जो जोर से स्पेशल चल रहा है खास करके मातृ दिवस के उपलक्ष्य में। अगला बयान किशोर दा को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं ये जबरदस्त माँ के गाना कि कौन सी है वो चीज़ जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ तो मिल जाता है बंधु, परंतु माँ नहीं मिलती।

Zong een kiesjoor daar, asja die kea zo met die zonder bianne, ke kaun is die, hei wo cheese jo jaha, nahi milti. Sab kuch to mil jata hai saathiyo, parantu maa nahi milti. Kya alfaze hai, kya bayan tha, Adi Burman ki saanch par. 6 minute baki hai, 7:30 bajne mein saathiyo. अगला बयान है दिल को छू लेने वाला नगमा है, खास करके सभी माताओं के नाम रिश्ता तेरा मेरा, और ये कह रहा है मशहूर गायक लेत पंकज उदास जी।

बात है, दिल को छू कर और हिला कर रख दिया ये अति सुंदर बयान, खास करके माँ और बेटे का रिश्ता के बारे में। डगड़े पंकज दा के ब्यूटीफुल आवाज में, और ये भी स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के तरफ से दुनिया भर के तमाम माताओं के नाम। वक्त हो गया है कुछ शेर शायरी हो जाए ना, और खास करके मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ शेर्स लेकर आया हूँ खास करके माताओं के लिए। अर्ज किया है साथियों भाई भूपेंद्र जी, जो सभी अपने पूज्य माता जी के लिए लिखा था और मेरे लिए भी कुछ भेजा है, और बड़े प्यार से कहा कि अपने तमाम श्रोताओं को सुना देना भाई सुरेंद्र जी। थैंक यू भाई भूपेंद्र जी, और वो बहुत ही प्यार से मैं कोशिश करूंगा सुनाने को, क्योंकि माँ के शेर से ना, और माँ माँ तो माँ होते हैं यारो। तेरे बिना मैं ये दुनिया छोड़ तो दूं, तेरे बिना मैं ये दुनिया छोड़ तो दूं, पर उसका दिल कैसे दुखा दूं जो रोज दरवाजे पर खड़ी कहती है बेटा घर जल्दी आ जाना, वही तो माँ होते हैं। माँ तेरी याद सताती है, मेरे पास आ जाओ, थक गया हूं मुझे अपने आंचल में सुलाओ, उंगलियां अपनी फेर कर बालों में मेरे, एक बार फिर से बचपन की लोरियां सुनाओ। माँ पहले आंसू आते हैं, माँ पहले आंसू आते हैं, और तुम याद आती थी, माँ पहले आंसू आते थे और तुम याद आती थी, आज तू याद आती है और आंसू निकल आते हैं, ओ मेरी माँ। माँ तब भी रोती थी जब बेटा पेट में लात मारता था, माँ तब भी रोती थी जब बेटा गिर जाता था, माँ तब भी रोती थी जब बेटा बुखार या सर्दी में तड़पता था, माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था, और माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता, ये मत होने देना कभी बंधु। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में माँ के पुजारियों, थक गया हूँ रोटी के पीछे भाग भाग कर, थक गया हूँ रोटी के पीछे भाग भाग कर, थक गया हूँ सोती रातों में जाग जाग कर, काश मिल जाए वही बीता हुआ बचपन जब माँ खिलाती थी भाग भाग कर और सुलाती थी जाग जाग कर। द्वेता कुछ माँ के शेयर्स। अगला बयान जबरदस्त माँ का प्यार सा भरा हुआ ये नगमा है, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को महान गायक डिग्रेट मोहम्मद अजीज जी फ्रॉम द मूवी माँ निकटी एन निकटी।

क्या बात है, जितने अल्फाज आप सुने सभी में कितना सच्चाई छुपा है ना, कि माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़कर नहीं कोई दूजा। धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहा है साथियों, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान नेहा कक्कर के ब्यूटीफुल आवाज में ऑन दिस मदर्स डे स्पेशल 2020 खास करके फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से।

0: मम्मा थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी. मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ. थैंक यू सो मच. आई लव यू
1: मम्मा. क्या बात है, खुद रोती है और हम लोगों को भी यहाँ रोवा देती है स्टूडियो में. यह बुरा हाल हो गया मेरा, बिकॉज माँ तो माँ होती है ना. तो साथियों, धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे. और जरा दिल को थाम लेना, क्योंकि इतना दर्द है इस गाने में कि मैं सीकर रो पड़ूंगा और शायद आप घर पे भी, क्योंकि माँ ये शब्द में इतना ताकत है, इतना महानता है.

क्या बात है माएस्ट्रो अरिजीत सिंह जी के ब्यूटीफुल ग्रेट ग्रेट ग्रेट आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। आज के यह हसीन कार्यक्रम में जो खास करके सभी माताओं के नाम पे मैंने चलाया। तो साथियों वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। ये यश उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं हमारे प्रिय प्रिय श्रोतागणों की जिस तौतरिक समय कोशिश की आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये यश उम्मीद है कि आज का मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर पसंद आया हुआ होगा। खास करके मदर्स डे स्पेशल के उपलक्ष्य में मैंने ये प्रोग्राम को पेश

किया। हमारे बात आप सुनेंगे हम लोगों का बहना श्रीमती शांता बहन जी को, वो आगे के प्रोग्राम को चलाएगी। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, मौजूस दे ही हैगा। और जितने हो सके अपने परिवार के साथ, माता के साथ ये शुभ त्यौहार को मनाते रहना। मेरा काम तो ख़त्म हो गया, मैं भी अब घर पे जा रहा हूँ अपने पत्नी के साथ। थोड़ा बहुत मुदरदाख तो सवेरे हम लोग मना ही चुके लहली, अब रात के प्रवेश तक से कुछ खाना पीना के साथ हम लोग भी मनाओ जाए ना। तो यही तक था आज का मेरे हिस्से का प्रोग्राम।

अनुवाद के मुताबिक तो जाते जाते कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ आप सभी के खिदमत में। तो आज ये माता पिता के कुछ भजन है, अति सुंदर, कोशिश करता हूँ।

I love you all from the bottom of my heart. और अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ संगीतकारों का दास्ता नाम कार्यक्रम लेकर। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, बाय बाय, लव यू ऑल।

है ना सुंदर गीत किशोरदा जी की आवाज में कि प्यार बांटते चलो, अवश्य अवश्य प्यार बांटना ही चाहिए। आपके लिए गुजारिश हुआ गीत, एक बार फिर यहाँ से हम चला देते हैं।

फिल्म ब्लूफ मास्टर से सुने हमें मुकेश जी के आवाज में कि सोचा था प्यार हम ना करेंगे पर हो गया, क्या करे, ये खास फरमाइश हम यहाँ से सुनेंगे।

फिल्म भाभी से निकाल दिया गया है। 1957 तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है मेरे प्यारे सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी के आवाज में। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरी हर दुआ प्रार्थना तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए है। तुम्हारी हर अदा मेरे दिल को चुराने के लिए है। अब तो मेरी जान तुम्हारे इंतज़ार के लिए है। अब तो मेरी जान मेरी ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार के लिए है। इस बार है मोहम्मद रफ़ी जी एक बार फिर। आई गो ये क्या हो गया।

हेमंत कुमार जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम ब्लफ मास्टर, और ब्लफ मास्टर ये फिल्म नेहंतिन द्रियन सेस्तक में पिक्चराइज किया गया है।

फिल्म धूल का फूल से सुने हम कि धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया। 1995 तक में ये पिक्चराइज किया गया।

तुमने इंतजार ना किया फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, मोहम्मद रफी जी की आवाज में। फिल्म का नाम दुनिया।

0: बता दो, याद रखोगे कि भूल जाओगे, लता जी के आवाज में।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

मेरे हमदम मेरे करीब आओ, और उससे पहले हम सुने उलझन सुलझना, सुना दी हमको आशा भोसले जी, फिल्म का नाम ढूंढ, फिल्म का नाम ढूंढ, 1983 तक में ये पिक्चराइज किया गया है। मंजिलों का इंतजार नहीं, मंजिलों का इंतजार नहीं, सफर का मजा लीजिए, हर गुजरते पल के साथ, हर गुजरते पल के साथ खुद को नया कीजिए। दो लम्हे के बीच की, दो लम्हों के बीच की हर घड़ी का नशा कीजिए। हंसते हंसते गाते जीते, हंसते गाते जीने की हर वजह ढूंढ लिया कीजिए। बहुत बहुत मुश्किलों से मिली जिंदगी, बहुत मुश्किलों से मिली जिंदगी, उस रब का शुक्र अदा कीजिए। रोते रोते रहे जाने कुछ ना होगा, वक्त के साथ इसे बेहतरीन कीजिए। वाहनित ऑफ द बस्टेमिंग, वाहनित ऑफ द बस्टेमिंग, खनित फान द रेस, खनित फान द रेस, फरन्यू फरन्यू योरसेल्फ मेट एलक फॉर बे खांत मोमेंट, खनित फरन्यू ए खनित फरन्यू योरसेल्फ मेट एलक फॉर बे खांत मोमेंट, खनित फान एलक मोमेंट टुसन ट्वी मोमेंटन, फिंड अल रीडनन om een gelukkig leven te leiden. Het leven wordt ons met grote moeite geschonken, God zij dank. Er zal niets veranderen als je blijft huilen. Er zal niets veranderen als je blijft huilen. Maar maak er met de tijd het beste van.

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

गीता का सार, गीता का सार, गीता का सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लेकर आए थे, तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया।

ने जो लिया तुमने जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो आज तुम्हारा है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन परिवर्तन।

यीशुदास जी की आवाज में, यीशुदास जी की आवाज में फिल्म का नाम एक बार कहो। फिल्म का नाम एक बार कहो। नेखन तीन तख्त में ये पिक्चराइज किया गया। म्यूजिक

मौन यानी कि चुप और मुस्कान यानी कि ग्लिमलाख। इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज दैट फर्शकिल? मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए, दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। मौन से यहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है। मौन से यहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है। तो मुस्कान से, एक मीठी मुस्कान से एक मीठी मुस्कान से

दुनिया अगर मिल जाए तो आप ही बताओ आपको क्या चाहिए। फिल्म प्यासा से ये सुंदर सा गीत रफी जी की आवाज में। पत्थर की है दुनिया, पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती। पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है, दिल में क्या है वो बात नहीं समझती। तन्हा तन्हा तो चांद भी है, तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, तन्हा तो चांद भी है सितारों के बीच, पर चांद का दर्द, पर चांद का दर्द वो रात नहीं समझती।

जिंदगी क्या है, रफी साहब की आवाज में दिल दिल को टटोल देते हैं ये सुंदर सुंदर गीत। माय गॉड, इंसानियत इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है। इंसानियत इंसान

फाहुंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 6 20 तक सेफ नफेटा फाहुंड हिंदुस्तानी रेडियो।

से तो आपको मालूम हो गया है। माँ तो कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, माँ निराली है, माँ प्यारी है। मातृ दिवस के उपलक्ष पर आपके लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मातृ दिवस के उपहार पेश किया जाता है।

मंजिल दूर है और सफ़र बहुत है, मंजिल दूर है और सफ़र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की मुझे, लेकिन माँ की दुआएं में असर बहुत है, लेकिन माँ के दुआओं में असर बहुत है।

एक माँ का धरती माँ से सवाल, एक माँ का धरती माँ से सवाल। एक माँ ने धरती माँ से कहा कि तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरे हकदार सदा करते तेरी रखवाली है, तेरे हकदार सदा करते तेरे रखवाली है। बंजर बंजर होने पर भी लोग तुझे पाने को तरसते हैं, बंजर होने पर भी तुझे लोग पाने को तरसते हैं, तेरे लिए भाई भाई भी कट मरते हैं। मुझसे क्यों हर कोई पीछा छुड़वाता है, बुढ़ापे के दहलीज लांघते ही क्यों हर कोई मुझको आँख दिखाते हैं। माना हाथ पैर कमज़ोर पड़ गई, पर मैंने भी बहुत कमाया था, जो ठुकराते हैं आज मुझको उनके लिए सुख चैन अपना गंवाया था।

0: गिन लेती है माँ, गिन लेती है दिन बगैर मेरे गुजारे हैं कितने, गिन लेते हैं दिन बगैर मेरे गुजारे हैं कितने, भला कैसे कह दूँ कि मेरे माँ अनपढ़ है। जब दवा काम नहीं आती तब माँ की दुआ काम आती है। मैन इश्त कामर द बार मुदर फॉर माई मुदर, मैन इश्त रेस्टोरेंट द बोर्स फॉर माई मुदर, द इश्त टॉयलेट द स्कूट फॉर माई मुदर, द इश्त स्कूल द कुकन फॉर माई मुदर, द इश्त लेरार द इश्त लेरार माई मुदर, मैन इश्त डॉक्टर इस माई मुदर, mijn eerste thermometer, de vingers van mijn moeder, mijn eerste vriend is mijn moeder, mijn eerste voertuig mijn moeder, lang leven mama als ze nog leeft, als ze niet meer in leven is. Om Shanti. माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, माँ शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। दुनिया में हम चाहे कितने भी रिश्ते क्यों ना बना ले, लेकिन माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा का अधूरा ही होता है।
1: माँ जीवन देती है, जीना सिखाती है, माँ ज्ञान देती है, आचरण सिखाती है, माँ भोजन देती है, निवाला खिलाती है, माँ लोरी देती है, निंदिया दिलाती है, माँ आंचल है, सरल है, ममता का रूप है, सागर है, त्याग का, विश्वास का गगन है। जन्म देने वाली को माँ कहते हैं, पर बहुओं को बेटी मानने वाली को भी माँ ही कहते हैं। सासू माँ की बुराई हमेशा सुनते हैं, पर इस समाज में सबके लिए उदाहरण है ये सासू माँ, जिसने अपनी बहुओं को हमेशा बेटियों की तरह रखा है।

रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल छू जाते हैं। ये सुंदर सुंदर गीत आपके लिए पेश किया जाता है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मातृ दिवस के उपहार आपके लिए पेश किया जाता है।

हो माँ रितेश तिवारी की आवाज़ में यहाँ हमने सुने हैं। ओ माँ ओ माँ, पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है उम्र भर, पहाड़ों जैसे सदमे झेलती है उम्र भर, लेकिन एक औलाद की तकलीफ से माँ टूट जाती है। जिंदगी के पहले शिक्षक, जिंदगी के पहले शिक्षक माँ, पहले दोस्त माँ, जिंदगी भी माँ, क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ ही है। एक बच्चा कहते हैं कि मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता।

जरूर से आपकी माँ हो तो जरूर से कह देना कि आई लव यू मेरी माँ। अगर नहीं भी हो तो आप मन ही मन में, दिल ही दिल में भी कह दो कि आई लव यू मेरी माँ, क्योंकि माँ के होने से आज हम हैं। जिनके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, जिनके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, मैं ऊपर वाला से पहली मेरी माँ को जानता हूँ।

माँ सबकी जगह ले लेती है, माँ सबकी जगह ले सकती है, पर माँ की जगह, जी हाँ, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। खुद मौत के मुंह में जाकर, खुद मौत के मुंह में जाकर बच्चे को जीवन दान दे, ऐसा है वो शक्तिशाली माँ जो इतना महान काम कर दे।

माँ के लिए प्यार, माँ के लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जन्म जन्मांतर तक ये रहते हैं। माँ ने तो उम्र भर संभाला ही था, माँ ने तो उम्र भर संभाला ही था, हमने हमें तो ज़िंदगी ने रुलाया है। कहाँ से पड़ती कांटों की आदत हमें, कहाँ से पड़ती कांटों की आदत हमें, माँ ने हमेशा अपनी गोद में सुलाया है। खुद मौत के मुंह में जाकर बच्चे को जन्म दान दे, ऐसा है वो शक्तिशाली माँ जो इतना महान काम कर दे।

हस्ती है जो जान है मेरी, एक हस्ती है जो जान है मेरी, जो जान से भी बढ़कर शान है मेरी, जो जान से भी बढ़कर शान है मेरी, वो कोई और नहीं माँ है मेरी।

शरीर छोड़ जाने वाले तो वापस नहीं आते हैं, उनकी यादें तो ज़रूर से रहते हैं। उन यादों को हम दिल में समेट कर याद कर लेते हैं। मातृ दिवस के ये उपहार आपके लिए पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मातृ दिवस पर आप सभी को हार्दिक से शुभकामनाएं पेश किया जाता है। माँ के प्यार का बदला इस जन्म में तो क्या, अगर हजार जन्म भी लो तो उतार नहीं सकता। माँ के बगैर घर सोना होती है और बाप के बगैर जिंदगी। पूरी दुनिया जीत कर भी अगर माँ बाप के दिल ना जीते, पूरी दुनिया जीत कर अगर माँ बाप के दिल ना जीता तो वो हार के समान है।

माँ बाप की तरफ अपने बच्चों के लिए कितना प्यार भी होता है और समय आने पर भी दुख भी झेलना पड़ता है माँ बाप को। पूरी दुनिया माँ के बगैर सूना है, माँ के बगैर घर सूना होती है और बाप के बगैर जिंदगी। ऊपर वाला से करूं दुआ बार बार, हर जन्म मिले मुझे माँ बाप का प्यार। ऊपर वाला करे मेरी मन्नत, फिर से देना मुझे माँ का आंचल बाप का साया। माँ खुशियों की ज़मीन होती है, माँ खुशियों की ज़मीन होती है, माँ बच्चों के लिए भगवान होती है। देख के अपना औलाद, देख के अपने औलाद के आँखों में आंसू, खुद भी जो अपनी आँख भिगो ले वो माँ ही होती है। हर किसी को नहीं मिलता माँ बाप का प्यार, हर किसी को नहीं मिलता माँ का प्यार। खुश नसीब है वो जिनको मिला है।

माँ के दिल को समझना है थोड़ा सा मुश्किल, माँ के दिल को समझना है थोड़ा सा मुश्किल, चाहे सुख दे या दुख दे बच्चा, रहे हर सोल्यूशन में शामिल। मेरे सिर पर माँ के हाथ है, मेरे सिर पर माँ के हाथ है, फ़र्क नहीं पड़ता कौन खिलाफ है।

0: माँ मेरी माँ तेरा है शुक्रिया, आपको दिल से धन्यवाद दिया जाता है माँ के प्रति। मेरे सिर पर माँ के हाथ है, फर्क नहीं पड़ता कौन खिलाफ है। मातृ दिवस स्पेशल आपके लिए बनाया सजाया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। आपको ढेर सारा प्यार मिले।
1: हम हैं जॉनी नंबर वन, और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे, तो आओ सुना जाए। मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ, फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं भी शायर नहीं हूं, लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

दोस्ती पसंद आए हमारे दोस्तों। तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं और प्यार के मूड में आए हैं, तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए। और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

बोल सुप्रीमनियन के बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के ओर, वो भी आज प्यार के मूड में है, कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे। ये तो एक और हो जाए बाला सुब्रमण्यम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार
0: और मैं भी
1: तुमको
0: बहुत प्यार करते हैं हम
1: बहुत

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेख सांसों में दम रहेगा दोस्तों। तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमा श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत आतिशबाजी हील अवलीचे फन 1957 और फिल्म के नाम बा भाभी और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

हम दोनों दो प्रेमी और दुनिया छोड़ चले रोमांटिक सॉन्ग है, राजेश खन्ना का फिल्म है, दादा किशोर कुमार जी और नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो। और ये गीत है, फिल्म के नाम है ताज नेगती सेशन फाइव तक के, दादा हेमंत कुमार और दादा हेमंत कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

और घोरी बुलाए तेरा सावरिया, मनाए तेरा सावरिया, और ये बात है मान भी जा। तो ये फिल्म के नाम है बेताम, सोनी देओल अमृता सिंह का और नैतिके लता जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए फनत यार नीखती होंडत इंद्री इन तख्त का ये गीत है।

और जब हम जमा होगे जाने कहाँ होगे। और हम और आगे को चलते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं भैया कांति कुमार के ओर जोकर, तो आओ मिलकर सुना जाए।

और जाने कहां गए वो दिन, फिल्म के नाम ही मेरा नाम जोकर निकले और उसी फतक का ये फिल्म है दोस्तों। माइटी मुकेश का ये लवली प्यार भरी सॉन्ग है। ये सॉन्ग जो है दोस्तों पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग है जो मेरे ख्याल से न सिर्फ मुझे आपको और आपकी बगल वाला या बगल वाली को भी अच्छा लगेगे। और लातवे खनिटे में औ निमर्स फन मेरे दिलिए पुकारे आजा। मूवी का नाम है नागिन।

और मेरा दिल ये और क्या होता है मेरे दिल को पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जों थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोंग है, हमारे यारों हरियाली रास्ता का ये जोंग है।

और अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं कि इश्क में क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों इश्क में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो लता जी तलत महमूद का ये सॉन्ग है। मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

और इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहां तक। और वो चलते हैं तदलुत महमूद का और नाइटिगेल लता जी का जोंग थे। आशा परीख सुनील लतीफ ने काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का। ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या है आपकी आंखों में क्या है ओ तो आपको पता है कि किसके सपने आप देख रहे हैं।

और दोस्तों लिखा है तेरी आंखों में, और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपको तो पता है। साथ ही साथ चल रही कि पन्ना की तमन्ना में नाइटिंगेल लचा जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिन्हा तमन ने इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या, और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

गौर मिल जाता है, हीरा मिल जाता है नैतिक लता जी का ये जोंग थे। उसके बाद प्रेम चलते है मौफी के नाम असली नकली निकति होने द्रियन शस्तक का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमात श्री मोहम्मद रफी और नैतिक लता जी का सॉन्ग है, जिसमें शंकर जयस्कंद का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसरत जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

से बांध लिया है मौफी के नाम थे। असली नकली के बाद में हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाशीर मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

अच्छा ये मैं हारी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं और ओल्ड एंड गोल्ड के बांध में अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में बस प्यार ही प्यार पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है मौफी के नाम है प्यार।

प्यार ही प्यार मूवी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मूवी का ये सॉन्ग है, चलती का नाम है गाड़ी।

और हाल कैसा है आपकी आप बता दीजिए, मुझे इतना प्यार है और किससे ये आप भी मुझसे बताइए।